0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क

0: से स्थायी छूट अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। परमात्मा अपने श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि बनाते हैं। उन श्रेष्ठ व शुभ संकल्पों को अपनाकर ही व्यक्ति अपने भाग्य, संस्कार, संसार, कारोबार अथवा कर्म को श्रेष्ठ बना सकता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: AIR at 90. शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: हम अपनी चेतना और चिंतन को जितना अंतरात्मा व परमात्मा की स्मृतियों से समृद्ध रखते हैं, हमारी भावनाएं भी उसके अनुरूप शुभ एवं कल्याणकारी बन जाती हैं, जो हमारे जीवन व संसार को खुशहाल बना देती हैं।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।

0: गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जित सुपावा, बिन पाने के नाय करी, जेती सृष्ट उफाई वेखा, बिन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवां खना विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के, कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरै, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे, सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तरतवल आकाश।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आपसे कुछ ही देर में 6:40 पर मानस गान कार्यक्रम आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार का समय है 7:20 पर और 6:35 पर होगा कार्यक्रम अमरवाणी।

7:31 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पूर्वा सुहानी। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स का समय है 8:45। 9:30 पर होगा कार्यक्रम उर्दू लखनऊ केंद्र से। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा 9:50 पर। आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम 10:05 पर इसे लेकर आएंगे सौम्या। 10:55 पर होगा मन की बात दिल्ली केंद्र से। मन की बात के हिंदी संस्करण के तुरंत बाद संस्कृत में मन की बात का प्रसारण किया जाएगा 11:30 पर। दोपहर के 12 बजे होगा कार्यक्रम बाल मंच, इसे लेकर आएंगे रंजना मिश्रा। इसमें एकेडमी स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दिखाया सुनाया जाएगा।

12:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सुहाने। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे जगजीत सिंह। ये कार्यक्रम होगा 12:55 पर। 1:15 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, इसे लेकर आएंगी लता चंदोला। आज चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, साथ ही घर रखे घर के सदस्यों को तंबाकू से दूर विषय पर भी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही कुछ टिप्स दिए जाएंगे रसोई से संबंधित।

युवा भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे 5:50 पर युवा वाणी, और ग्राम जगत कार्यक्रम का समय है 5:30 पर। ये था आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अमर वाणी।

0: ेयं खुनाणिनो सारं जं न हिंसैकञ्चन
1: कषाय दहनः शान्तिं यातिरागादिभिः समं चेतः प्रसक्तिमाधत्ते वृद्धसेवावलम्बिनां। जो लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी मनोविकार रूपी अग्नि शांत हो जाती है, चित्त में निर्मलता आती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है। सत्तत्व निकषोद्भूतम विवेकालोकवर्धितम येषां बोधमयं चक्षुः ते वृद्धा विदुषां मताः। जिसके तत्व परीक्षा करते करते ज्ञान रूपी आँखों में विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है, ऐसे ही महापुरुषों को विद्वान लोग वृद्ध पुरुष कहते हैं। सुधांशुरश्मि संपर्काद विसर्पति यथाम बुधि तथा सद्वृत्त संसर्गात नृणाम प्रज्ञापयो निधि। जिस प्रकार चंद्र की किरणों के संसर्ग से समुद्र में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सदाचारी लोगों के संसर्ग से, उनकी सत्संगति से मनुष्य के बुद्धि रूपी समुद्र में भी विस्तार होता है, उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। कुर्वन्नपि तपस्तीव्रम विदन्नपि श्रुतार्णवम नासादयति कल्याणम चेद वृद्धान अवमन्यते। चाहे व्यक्ति कितना ही घोर तपश्चर्या करे, शास्त्र रूपी समुद्र का भी पारगामी हो जाए, किंतु यदि वह वृद्ध जनों का अपमान करता है तो उसे कल्याण की और मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दहति दुरित कक्षम कर्म बंधम लुनीते वितरति यम सिद्धिम भाव शुद्धिम तनोति जयति जनन तीरम ज्ञान राज्यं च दत्ते ध्रुवमिह मनुजानाम वृद्ध सेवैव साध्वी। भली भांति की गई वृद्ध सेवा से, बड़ों बूढ़ों की सेवा से निश्चय ही मनुष्य के पाप रूपी वन का भस्मीकरण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म के बंधन कट जाते हैं और संयम की सिद्धि होती है, परिणाम निर्मल होते हैं और संसार रूपी समुद्र का किनारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। श्रमाम्बुभि क्रोध सिखी निवार्यताम नियम्यताम मान मुदार मार्दवैहि यंच मायार जव शस्त्र धारया मुनीश लोभश्च परिग्रहात्ययात्। जब क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तब उसे क्षमा रूपी जल से बुझा देना चाहिए, अभिमान को मृदुता से जीतना चाहिए, माया का भाव मन में जब जागृत हो तो उसे सरलता से मिटाना चाहिए, और जब लोभ की वृत्ति बढ़ रही हो तो उसे अपरिग्रह की भावना से दबा देना चाहिए। येन येन निवार्यन्ते क्रोधाद्या परिपन्थिनः स्वीकार्यम् अप्रमत्तेन तत्तत् कर्म मनीषिणा। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो आलस्य छोड़कर ऐसा ही कार्य करता है जिनसे मन के विकार नहीं होते, क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, ऐसे ही जो कार्य करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। व्यवहारे सुषुप्तो यः सजागर्त्यात्मगोचरे जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहता है वही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में यत्नशील रह सकता है। इसके विपरीत जो सांसारिक व्यवहार में उत्साही व्यक्ति आत्म साधना में सोए हुए की भांति प्रगति नहीं कर पाता।
2: अभी आप सुन रहे थे अमरवाणी, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।
1: सेवावलंबिनां

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िए सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री राम चेतमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जी, आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे

0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के CG सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में DRDO की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। इस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया

0: बीएससी ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
1: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

अभिनेत्री फिल्म में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत लिखा है मजरू ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अगला गीत राजा जानी फिल्म से है, आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: अब आइए सुनते हैं मनाडे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में उजाला फिल्म का गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और बोल हैं हसरत जयपुरी के।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

दिल तेरा दीवाना। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार थे शंकर जय किशन, संगीतकार हैं शंकर जय किशन और गीत लिखा है शैलेंद्र ने। और अब आइए सुनते हैं असली नकली फिल्में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। संगीत शंकर जय किशन का है और बोल हैं हसरत जयपुरी के।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।
1: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक

0: रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
3: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
4: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defense Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
7: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
6: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his five-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The Myanmar president will then travel to Mumbai on Tuesday for business and industry interactions and site visits. Mr. Hlaing is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of Mr. Hlaing to India in his current capacity. Centre has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. More from our correspondent.
8: According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. The Finance Ministry noted that the export levies comprising special additional excise duty and road and infrastructure cess were introduced on March 27 this year and are reviewed every fortnight based on average international prices of crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel. However, the government has clarified that there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption. The revised duties will come into effect from tomorrow and remain in force for the next fortnight. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
6: The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles. The Election Commission has convened a national conference of Election Commission of India Councils 2026 in New Delhi to further strengthen its legal framework. Inaugurating the conference, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said that fair rolls lead to fair polls. He also hailed booth-level officers and booth-level agents as the foot soldiers of electoral roll management. He also highlighted the high level of contestation during the recent assembly elections in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal.
9: Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has hailed the launching of Skycar system at IGI Airport in New Delhi. The minister said that advanced weather monitoring systems like Skycast can significantly improve flight operations during fog and turbulence. He added that as this technology expands to more airports across the country, it will strengthen safety and enhance the travel experience for passengers. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Maharashtra, death toll in the Pune spurious liquor tragedy has risen to 21. The victims include 7 people from Pune city and 14 from Pimpri, Chinchwad and Uruli Kanchan areas. So far, 10 persons have been arrested in connection with the case. The investigation has been handed over to the Crime Investigation Department, CID. In a major administrative action, 22 officials have been suspended for alleged negligence in the discharge of their duties. Those suspended include 9 police personnel and 13 officials from the State Excise Department. Jammu and Kashmir Minister Sakina Itu has announced summer vacations for all government and private colleges falling under the summer zone of Jammu Division from 1st of June to 15th of July. The minister said the decision has been taken in view of the onset of the summer season and to ensure the well-being of students, teaching faculty and college staff. The minister further informed that regular academic activities in all colleges will resume after the conclusion of the vacation period on 15th of July. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Keralam, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. In Keralam, yellow alert has been sounded in 6 districts for today. More from our correspondent.
10: 6 of the 14 districts in Keralam is under yellow alert today, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Isolated heavy rainfall and winds up to the speed of 40 km per hour is forecasted across Keralam over the next 4 days. The onset of monsoon has not yet been officially declared in Keralam. No heavy rainfall was recorded in the northern part of Keralam this morning, while the southern districts have received up to 5 mm of rain since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
9: Moreover, heavy rainfall is also expected over Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and the northeastern parts of the country till tomorrow. IMD said thunderstorms accompanied by hailstorm are very likely at isolated places over East Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh today, while thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected at isolated places over Delhi, Haryana and Chandigarh till tomorrow. World No Tobacco Day is being observed today to raise awareness against the dangers of using tobacco. The day is a global initiative by the World Health Organization to end the use of tobacco. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. We have a report.
11: As part of the observance in India, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava on Friday launched the pilot version of the Tobacco-Free Education Institutions application in New Delhi. The application aims to strengthen implementation and monitoring of tobacco-free norms across schools and colleges in the country. It will also facilitate self-assessment and reporting by educational institutions, monitor compliance with tobacco-free guidelines, ensure implementation of tobacco control signage, and help prohibit the sale of tobacco products within 100 yards of educational institutions. Addressing the gathering, Srivastava said that more than 2,000 tobacco cessation centers have been established across the country in hospitals, medical colleges, Ayush institutions, and other healthcare facilities. With Vishnu's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
9: In cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the IPL 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. More from our sports desk. With the trophy within touching distance, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru will look to make most of their strengths in the final. Gujarat Titans have beaten RCB at this venue earlier this season, but Bengaluru will draw confidence from having won their maiden IPL title at the same ground last year. RCB have enjoyed an impressive campaign and entered the final after a three-day break. Their batting has been one of the strongest in the tournament, with Virat Kohli leading the charge. In bowling department, Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood have been among the key performers with the new ball. Meanwhile, Gujarat Titans, led by Shubman Gill, secured the top two finish in the league stage and bounced back from the qualifier 1 defeat to book their place in the final. The team will once again rely on key batters Gill, Sai Sudarshan and Joss Butler, while all-rounder Jason Holder has strengthened their bowling attack with important wickets in the second half of the season. Both teams are aiming for their second IPL title. Gujarat won their maiden crown in 2022, while RCB are looking to successfully defend

0: Earlier, Sattvik Sairaj and Chirag defeated the world number one South Korean pair of Seo Jae-jae and Kim Won-ho 21-19, 21-18 in the semi-finals yesterday. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. Political developments in Karnataka. CUET retest and TMC leader Abhishek Banerjee mobbed during visit to South. 24 Parganas are the front page stories in most dailies. The Statesman informs Amit Shah on a visit to West Bengal seeks close watch on radicalization centers on border. Newspapers report US Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a critical anchor in Indo-Pacific region. Financial Express headlines India helps maintain balance of power, while the Sunday Express says no China hegemony. Hegseth flags co-production of Javelin anti-tank missile with India. The Tribune informs Vinesh fails to make Asian Games cut, promises to return to the mat. Economic Times says EV sales in fast lane, but Motor Town treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric, as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan, reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ल्हांग अपने पांच रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया

0: पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग यिलांग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राबतों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकरर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ के ईंधन की औसत बैनुल अक्वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायज़ा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाज़ेह किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजर सानी शुदा ड्यूटीज़ का कल से इतलाक़ होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। ये दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज़ में 2000 से ज़्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज़ कायम किए गए हैं। نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے. مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پیچری، چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے. اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے. اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے. معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں. جموں کشمیر کی وزیر سکینہ اٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے. محترمہ اٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ، تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے. قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے. صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے. وزارت نے کہا ہے کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے. عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریاسس نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سفری پابندیاں عائد کرنے یا اپنی سرحدیں بند کر دینے والے ممالک سے ان اقدامات پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے. جناب گیبریاسس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بیماری سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. مشرقی کانگو کے بنیا میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گیبریاسس نے کہا کہ بنیا کے ان کے دورے کا مقصد متاثرہ برادریوں کے ساتھ سیدھے طور پر مصروف عمل ہونا ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں بیماری سے نمٹنے کی کوششوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا ہے. جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے 900 سے زیادہ مشتبہ ایبولا معاملوں میں 200 سے زیادہ مشتبہ اموات رپورٹ کی ہیں. وہیں پڑوسی یوگینڈا نے راجدھانی کمپالا میں نئے انفیکشن سمیت مجموعی طور پر 9 معاملوں کی تصدیق کی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے علاوہ اوڈیشہ، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی کل تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر آج چھینٹے پڑنے کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. وہیں دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے کچھ مقامات پر کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلنے کا امکان ہے. اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیاتی ایجنسی نے اگلے 2 دن کے دوران راجستھان کے مختلف مقامات پر دھول بھری آندھی چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. کیرالم میں شدید بارش کے امکان کے تحت 6 ضلعوں میں آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اگلے 4 دنوں کے دوران ریاست میں کہیں کہیں شدید بارش اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. البتہ کیرالم میں باضابطہ طور پر مانسون کی آمد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. IPL کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 2026 سیزن کے فائنل میچ میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ کھیلا جائے گا. RCB نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور 3 دن کے وقفے کے بعد فائنل میں داخل ہو رہی ہے. ٹورنامنٹ کی مضبوط ترین ان کی بلے بازی رہی ہے جس میں وراٹ کوہلی کی کارکردگی نمایاں رہی ہے، جبکہ گیند بازی میں بھونیشور کمار اور جوش ہیزل ووڈ نئی گیند کے ساتھ ٹیم کے اہم کھلاڑیوں میں شامل رہے ہیں. دوسری جانب شبمن گل کی قیادت میں گجرات ٹائٹنز نے لیگ مرحلے میں ٹاپ 2 میں جگہ حاصل کی اور کوالیفائر 1 میں शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कवामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहेबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
3: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़रात और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मईशत मजबूत मगर एहतियात ज़रूरी, वजारत ख़जाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत ख़जाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मईशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोज़ा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज़ों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा।
4: जी, आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म जॉली एलएलबी 2 के इस गाने से। आवाज़ें हैं सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और कादिर मुस्तफ़ा। संगीत विशाल खुराना का है और बोल हैं जुनैद वासी का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अगला गीत बादशाहों फिल्म से है, नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान की आवाज़ों में। संगीत है तनिष्क बागची का और गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

बजरंगी भाईजान इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी को, संगीत प्रीतम का था और बोल था कैसर मुनीर का। अगला गीत है दुश्मन फिल्म से, किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले की आवाज़ों में, संगीत रोशन का है। माफ़ कीजिएगा, दुश्मन फिल्म किशोर कुमार की ही आवाज़ है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और गीत है आनंद बख्शी का।

इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है बरसात की रात फिल्म, सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले और की आवाज़ों में। संगीत है रोशन का, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में सामयिक चर्चा लखनऊ केंद्र से।

0: है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं, जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पे, जैसे मैंने कहा कोविड-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से स्पीका को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी, उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी हमेशा, भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है, जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें एआई का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि एआई से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है, और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टेट है इंडिया का, और करीब 10% के आसपास का जीडी जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से एआई को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, जिससे ना केवल हमारे मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
2: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के, आपने एआई की बात की, पढ़ाई को लेकर के, ये क्या क्या चेंजेस हुए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं। एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके, इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की। किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है मुंबई में, दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में। जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
3: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल आपकी, जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेस वेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेस वेज बल्कि जो टर्शियरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेस वे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा, एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में एआई को लेके भारत की जो कंपनियां, अग्रणी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा, तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा।
2: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है। और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं। हर घर जल की अगर बात करें, 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो पीएम आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की, युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
3: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट, सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है। खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है, और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है MSME को लेके कि कोलैटरल लोन कैसे देना है, स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है। क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य है, तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है, वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
2: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के बारे।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं देश का।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से।

0: रेखा मिश्रा की है। इसके अलावा आप सुनेंगे खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। सदाकार हैं शाजिया खान और सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इन शेरों के खालिक मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र साहब 28 मई 2026 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। आज के इस उर्दू कार्यक्रम में हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी अदबी, इल्मी और शायरी की खिदमात को सलाम करते हैं। बशीर बद्र साहब का कलाम मोहब्बत, इंसानियत और जिंदगी के नाजुक एहसास का आईना रहा है। उनकी यादें और उनकी शायरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।
2: सामीन, आज हम उर्दू प्रोग्राम की महफिल सुखन में बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड याफ्ता, सत्या एकेडमी इनाम याफ्ता, बा कमाल व जमाल शख्सियत, इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान और आहट जैसे शेरी मजमुओं के तख्लीककार, जदीद उर्दू गजलियात के अलमबरदार, अपने मुनफरिद लबो लहजे के अजीम उल मर्तबत शायर, उर्दू शायरी के चश्मो चराग जनाब बशीर बद्र साहब की, जिन्होंने अपनी शायरी के चराग से अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया और जिनकी गजलों ने दिल के कोने कोने में जाकर उजाला कर दिया। इसी मौके पर बशीर साहब फरमाते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, मैं खुद भी एहतियातन उस तरफ से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे मुझको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए। सामीन, बशीर बद्र साहब सिर्फ शायर नहीं बल्कि आशिक़े सुखन हैं। बिलाशुबा उनकी गजलों ने उर्दू शायरी को नई सांसें अता की हैं। जरा ये शेर समाअत फरमाएं, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,

0: AIR at 90. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार थे जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ उस समय जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
2: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: जी, आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
4: फाइव वन टू टू जीरो फाइव थ्री एट सिक्स। हेलो
5: हेलो
4: हेलो
6: हेलो
4: हेलो फरमाइश।
7: हेलो फरमाइश।

0: संगीत को सुनना दरअसल अपने भीतर की आवाज को सुनना है, क्यों है ना? नमस्कार, आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ मैं सौम्या दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चलिए लेते हैं आज का पहला कॉल और देखते हैं कौन है।
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो,
0: बताइए आज किस फिल्म से आपकी फरमाइश है गीत सुनने की?
1: दिल है कि मानता नहीं का गाना सुना दीजिए।
0: दिल है कि मानता नहीं, ओके, कौन सा?
1: दिल है कि मानता नहीं की ही सॉन्ग है, दिल है कि मानता
0: शीर्षक गीत।
1: हाँ, ओके।
0: अपना शुभ नाम आप तो बता ही नहीं, क्यों आप बोल रहे?
1: मैं कन्हैया बोल रहा हूँ।
0: ओके, तो कन्हैया जी, ये रहा दिल है कि मानता नहीं फिल्म से आपके लिए गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो पुनी फरमाई।
0: हाँ जी, किनसे बात हो रही है?
1: हाँ मैं नमस्कार संजय कुमार,
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: मऊ जिला उत्तर प्रदेश से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: और मैं क्या हाल चाल है? ठीक
0: बस बढ़िया है। हेलो,
1: है। कह रहे हैं मैं ये शनिवार छोड़ कर दूसरा शनिवार को हमने सोचा की बात किया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी मैन,
0: आज किस फिल्म से फरमाइश है आपकी?
1: अभिजीत सर की आवाज में कोई सुना दीजिए मैन।
0: अच्छा चलिए, अभिजीत जी की आवाज में आप गीत सुनना चाहते हैं तो ये रहा गीत।
1: ठीक है मैन, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, किन से बात हो रही है?
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू मैम। आज मैंने कम से कम 2 महीने के बाद कॉल लगाई मैम।
0: चलिए अच्छी बात है, लग तो गया कॉल।
1: जी जी कॉल लग गया। मैं नीलम शोर्ट रूप से आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। आप तो आपने सप्ताह में एक बार हेलो फरमाइज कर दिया मैम।
0: जी जी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता फोन करते हैं, बने रहते हैं हम लोगों के साथ और अपने पसंद का गीत सुनते हैं। और बताइए आज किस फिल्म से हम आपको गीत सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है दिलवाले। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
0: तो ये रहा दिलवाले फिल्म से गीत आपके लिए, एंजॉय कीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: आयुष बोलते हैं, बिहार से।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम मोटरसाइकिल की कंपनी में लगे हुए हैं।
0: ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और फटाक से बता दीजिए कि आपको किस फिल्म से गीत सुनवाना है।
1: फिल्म का नाम है आंखें।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश में नमस्ते।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है?
1: मैं प्रदीप बोल रहा हूँ।
0: प्रदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ललितपुर से बोल रहा हूँ मैम।
0: ललितपुर से, क्या हाल चाल है? हाँ। ललितपुर का
1: अच्छा है मैम। अभी रात में बारिश आ गई, आंधी हो रही थी, मौसम खराब था 2-3 दिन से।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ।
0: अब तो ठीक है?
1: हाँ अब तो ठीक है, आज से धूप निकली है मैम।
0: चलिए। हाँ। तो धूप इंजॉय कीजिए और साथ में हमें बताइए कि हम आपको किस फिल्म से गीत सुनवाए।
1: मैम मूवी रहेगी सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम, ओके।
1: इसका एक सॉन्ग है रंग महल के हैं, इसमें कुछ है।
0: और बताइए अपने बारे में।
1: मैम किराने का शॉप है हमारा।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ मैम।
0: ओके चलिए, तो ये रहा सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से गीत।
1: ओके मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार।

हम आपको बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगिया इंजीनियर कन्हैया कुमार और मोहम्मद आरिफ ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता नूर मोहम्मद। चलते चलते मित्रों आपसे एक गुजारिश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ अपने अड़ोस पड़ोस की स्वच्छता बनाए रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी रेडियो दोस्त सौम्या दीक्षित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 0
1: 5
0: 5
1: 1
0: 2
1: 2
0: 0
1: 5
0: 3
1: 8
0: 6 Hello
2: Hello
3: Hello
4: Hello
0: Hello Farmaish
5: Hello Farmaish
6: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
12: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
12: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
13: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
12: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
13: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
12: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
13: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
12: अनिमेश जी,
7: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं, तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
12: अच्छा देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।

0: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रेबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध

इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना
उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने
मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया।

0: ये बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः, गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः, सत्श्री अकाल च, अनिमेषगुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्, नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शन

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: बच्चों हम एक बार फिर लेकर आए हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंच आपके संग, जिसमें है आज बहुत सारे भक्ति के रंग। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बच्चों से उनका परिचय करते हैं। इसमें आज हम बहुत सारे बच्चों के साथ मिलेंगे और उनसे बहुत सारी मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपना नाम तो बताइए।
2: मेरा नाम तनुश्री पांडे है।
3: मेरा नाम खनक शर्मा है।
4: मेरा नाम अनवी सिंह है।
5: मेरा नाम काशवी सिंह है।
6: मेरा नाम अनंत श्रीवास्तव है।
0: तो भाई बच्चे हैं बड़े प्यारे प्यारे और इनके नाम भी कितने प्यारे हैं। तो सबसे पहले अनंत्या और तनुश्री आ रही हैं कुछ सुनाने आपको। तो अनंत्या आप क्या सुनाएंगी?
7: आई गिरी नंदिनी।
0: अरे वाह क्या बात है, कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आइए सुनते हैं हम।
7: आई गिरी नंदिनी नंदिता में दिन विश्व विनो दिन नंदन ते गिरिवर वृंद।

0: शमोश घोषरते अनजनी रोशिनी बीती सुतरो शिनी धर्म खशोशी घोषरते जय जय हे महिषा सुरमर दिन राम्य कपर दिन शैल सुदे मा राम्य कपर दिन शैल सुदे ऐ जगदम्ब गद प्रियवासिया सरते शिकरे शिमोशिन बीती सुत रोशन धुर मुख शोषण घोषरते अनुजन रोशिन बीती सुत रोशिन धुर मुख शोषण घोषरते जय जय हे महिषा सुरमर दिन राम्य कपर दिन शैल सुदे मा राम्य कपर दिन शैल सुदे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसके बाद आ रही है तनुश्री। कौन सा गीत लेकर आ रही है तनुश्री?
2: डगर है मुश्किल,
1: सुनाइए।
2: डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफी जगह नहीं है। डगर है

नहीं है, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफी जगह नहीं है, डगर

0: है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बच्चों, इस गीत के बाद चलिए हम थोड़ा सा और भक्तिमय हो जाते हैं खनक और अन्वी के साथ, और सुनते हैं हनुमान चालीसा।

सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदा।

महाजगवंदन विद्यावान गुणि अति चातुर राम काज करिबे को आत चरित्र सुनि बेको रशिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा बिकट रूप धरि लंक जनावा भीम रूप धरि असर सारे राम चंद्र के काज सवारे इस जीवन लखन जिया।

असे बदन तुम रोज सगावे, असे कही श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबीर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्याता ही मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका में लिखमाई, जल दीला दिए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआ

0: कीजिए।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। भाई बच्चे आकर के बिल्कुल जो माहौल है वो भक्तिमय बना दिए हैं, और आस्था जो है बच्चों के मन में है कि जो भी काम करें ईश्वर से डर के करें, सही करें, ईमानदारी से करें, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं, ना
2: जी दीदी।
0: हम लोग सुनाने जा रहे हैं, आरंभ है प्रचंड है।
1: तो भाई सुनाइए।
3: आरंभ है प्रचंड, भोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आने बान शाने आके जाने का हो दान, आज एक धनुष के बार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, भोले मस्तकों के झुंड।

है प्रचन। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्व शक्तिमान है। मन करे सो प्राण

0: जीत की है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरो पे मार दो। अन बन शन या की जान का हो दान, आज एक धनुष के वार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
1: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति काशवी और अन्वी की, जोरदार तालियां। और अब आ रही हैं अन्वी सुनाने अच्युतम केशवम।

अनवी ने सुनाया ये भजन। जोरदार तालियां। तो बच्चों, कार्यक्रम के इस पड़ाव में हम आ गए हैं फिर से काशवी और खनक के पास, जो कि एक बार फिर लेकर आ रही हैं भक्ति के रंग बरसाने इस भजन के साथ।

0: बहुत सुंदर काशवी और खनक के लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों हम आते हैं काशवी के पास और सुनते हैं उनसे ये कहानी। कौन सी कहानी है काशवी?
1: बकरी और भेड़िया।
0: तो सुनाइए।
1: एक समय की बात है, एक बकरी अपने चार बच्चों के साथ एक जंगल में घर बना के रहती थी। उनके बच्चों का नाम आले बाले पालू और मालू था। वह रोज शाम को घास चरने जाती और शाम होते ही वापस आ जाती। बकरी जानती थी कि जंगल में भेड़िए रहते हैं। बकरी रोज शाम को जाती और जल्दी ही आ जाती। बकरी एक दिन घास चरने जाती है, अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मैं जब तक आऊँ ना तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। बच्चे बोलते हैं, माँ पर हम आपको पहचानेंगे कैसे? बकरी बोली, मैं ये गाना सुनाऊंगी, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा जल्दी खोलो, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बोलते हैं, हाँ माँ हम समझ गए। बकरी दरवाजा बंद करके चली जाती है। बकरी के खिड़की के पास एक बदमाश भेड़िया सुन रहा था। बच्चों और बकरी की बात सारी सुन लेता है। वह अपने बेसुरी आवाज में आके गाने लगता है, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा जल्दी खोलो, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बोलते हैं, ये तो मेरी माँ नहीं हो सकती, इसमें हम लोग की माँ की आवाज़ कितनी सुरीली है और इसकी फटे हुए ढोल के जैसे। सारे बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया समझ जाता है बच्चे ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे। वह किसी तरह जंगल में जाता है। जंगल में जाके मधुमक्खियों के छत्तों का रस पीता है और फिर बकरी के घर पे आ जाता है। वह फिर गाने लगता है, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा जल्दी खोलो, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बोलते हैं, चलो इस बार तो हमारी माँ ही है, चलो दरवाजा खोल देते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा था मालू, वह जाकर दरवाजे के नीचे देखता है और कहता है, हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं और इसके तो काले कलूते। फिर बच्चे बोल रहे, तुम हमारी माँ नहीं हो। फिर भेड़िया जाता है गांव में, वहां पे जाके वो अपना पैर हाथी की बोरी में डुबाता है और फिर बकरी के घर पे फिर आ जाता है। फिर वो गाता है गाना, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा जल्दी खोलो, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बोलते हैं, इस बार तो हमारी माँ ही है, चलो चलो दरवाजा खोल देते हैं। छोटा बच्चा बोलता है, नहीं हमारी माँ नहीं है। बच्चे छोटे की बात ना सुन के दरवाजा खोल देते हैं और सामने जब उन्होंने भेड़िए को देखा, सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, कोई पलंग के नीचे, कोई अलमारी के ऊपर, तो कोई तो अपने आप को छुपाने के लिए चादर के अंदर ही घुस जाता है। सबसे छोटा बेटा आग वाले कुंड में चला जाता है, वहां पे जाके वो छुप जाता है। भेड़िया ने तीनों बच्चों को पकड़ लिया, चौथे वाले को नहीं ढूंढ पाया, तो वह उन्हें पकड़ता है और बोरिंग बांध के लेके चला जाता है। रास्ते में भेड़िया जाते जाते उसे नींद आने लगती है, वह जाके पेड़ के नीचे सोने लगता है, बोरी को अपने बगल में रखता है। बकरी छोड़ता है, शाम होते ही बकरी अपने घर पे आई। फिर वो आके बोलती है, बच्चों कहाँ हो? सबसे छोटा बच्चा बोलता है, मम्मा भेड़िया आया था और समय

0: पे जैसे ही वो जाता है वो पानी में ही बह जाता है, क्योंकि बकरी ने उसके अंदर पत्थर रख रखे थे, इसलिए भेड़िया पानी में नहीं तैर पाया और वो तैरते हुए चला गया, वो उसी में डूब के मर गया। बकरी अपने बच्चों को लेके घर पे चली गई, बकरी अपने साथ में बच्चों को दूध पिलाई और उन्हें सुला दिया।
1: बहुत ही बढ़िया कहानी बच्चों, जोरदार तालियां। पता है काशवी ने जो कहानी सुनाई इसका मोरल क्या है? इसका मोरल ये है कि हमें अपने मम्मी की बात माननी चाहिए, ठीक है? मम्मी जो भी कहती हैं, जैसे भी कहती हैं, वो हमें उसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों ने बात नहीं मानी अपनी मम्मी की तो वो फंस गए ना, क्या? इसलिए हमें हमेशा अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, है ना?
2: जी।
1: तो कनक आ रही है हम सबके बीच लेकर एक गीत।
3: जी दीदी।

तो पाल न झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे तो पाल न झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन

0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुरीली आवाज, कनक के लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों हम आते हैं अन्वी के पास, जो कि कुछ हमें सुनाने वाली हैं। तो अन्वी क्या लेकर आई हैं आप?
1: एक कहानी जिसका नाम है एकता में बल है।
0: तो भाई सुनाइए।
1: एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के चार बेटे थे। वे चारों आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी का

0: गुच्छा दिया। उन चारों में से किसी ने भी उस लकड़ी के गुच्छे को नहीं तोड़ा। फिर किसान ने उस लकड़ी के गुच्छे में से एक एक लकड़ी निकाल कर सारे अपने बेटों को दी। इस बार उन चार ने अपनी लकड़ियों को तोड़ दिया। फिर किसान ने अपने चारों बेटों को समझाया कि एकता में बल होता है, अगर वे सारे कार्य मिलकर करेंगे तो असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। अगर हम कोई भी कार्य एक साथ करेंगे तो हम उस कार्य को कर सकते हैं।
1: वाह भाई, बहुत ही अच्छी कहानी। अन्वी के लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों, इस कहानी के बाद चलिए हम सुनते हैं गाना। कौन सा सुना जाए?
2: लकड़ी की काठी।
1: अरे वाह, तो चलिए पहले हम सब मिलके गाते हैं, उसके बाद हम सुनाते हैं आपको ये गाना। ठीक है, तो चलिए गाइए।

0: तो बच्चों, इसी के साथ आज का बाल मंच कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को
1: जय हिंद।
0: आज के बाल मंच कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्रा।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

अभी आपने तीन फिल्मों के गाने सुने। पहली फिल्म थी जहरीला इंसान, दूसरी दिल से मिले दिल और तीसरी फिल्म अजनबी। गायक स्वर किशोर कुमार का, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, अमित खन्ना और अनबख्शी, संगीतकार राहुल देवर्मन और बप्पी लहरी। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: Akashvani at 90.
1: सामान्य समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से सुगम संगीत का प्रोग्राम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गई चंद गजलें।

0: इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। इसमें आज ही फनकार थे जगजीत सिंह। यह आकाशवाणी गोरखपुर है, 1:10 में अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी के मौजूदा मौसम में बेहद एहतियात बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ज्यादा मकदार में पानी पीने और धूप से बचाव के तरीके इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मियों के साथ साथ आम का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी के लंगड़ा के साथ हर इलाके के आम का जायका अनोखा और उसकी महक सौंधी होती है। उन्होंने कहा कि आम हमारी ज़रई मईशत के लिए भी बहुत खास है। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मुहिम के तहत बनाई गई हिंदुस्तान की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें खुसूसी रोल अदा किया है।
2: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते।
1: वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया।
2: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गए।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप सभी अपने आसपास की जा रही ऐसी कोशिशों को ज़रूर देखें और जो लोग मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सताइश कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। फर्टिलाइजर के तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल को फरोग देने के लिए 1 महीने की खेत बचाओ मुहिम कल से शुरू होगी। मरकजी वजीर बराए ज़रात शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस मुहिम को कौमी मुहिम बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुहिम का खास मकसद फर्टिलाइजर का तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल, मौसम के चैलेंजेस के मद्देनज़र किसानों को वक्त पर मशवरा, पंचायत सतह पर किसानों की शराकत दारी और गांवों को बराए रास्त स्कीमों के फायदे पर मरकूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। जनाब वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और दीगर खसूसी मादनी और एडवांस्ड अशिया का प्रोडक्शन कर रहा है। पूरी रियासत में आज उत्तर प्रदेश मुश्तरका बीएड दाखिला इम्तिहान 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में 72 इजला में कायम 1011 इम्तिहान मराकज पर कुल 4,44,958 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ये इम्तिहान 2 मीटिंगों में मुनक़िद हो रहा है। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इम्तिहान के मद्देनज़र इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इम्तिहान मराकज की CCTV से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% एडिशनल फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नाफिस करने का फैसला किया है। अगले महीने सार्फीन को अपने बिजली बिल में 10% ज्यादा अदायगी करनी होगी। आज आलमी नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से आलमी सेहत तंजीम के जरिए शुरू की गई खसूसी आलमी पहल का हिस्सा है। इस साल का मौजू है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। और रियासत के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने और बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और आवाम को गर्मी से नजात मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक और बारिश होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 56 अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन अजला में खसूसी तौर से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बरेली, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
0: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत। अब से बस कुछ ही देर में।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
8: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
9: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
8: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
9: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
8: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
9: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
8: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने,
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: कृपया ध्यान दें, रेलवे प्रशासन आपसे आग्रह करता है कि रेलवे ट्रैक पर ना तो स्वयं जाएं और ना ही पशुओं को जाने दें, इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना भी होता है और स्वयं को हारना भी होता है। सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी है। इसी सुविचार के साथ मैं लता चंदोला आ गई आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत लेके। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके ही कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहनों, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भाई, ये एक जो है वैश्विक समस्या बनती चली जा रही है कि लोग जो हैं जानते बूझते भी ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। बहनों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। किस विषय पर? विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। यह हर वर्ष आज ही के दिन 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना होता है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तंबाकू से बने पदार्थ शरीर को धीरे धीरे बीमार कर देते हैं। इससे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और कई ऐसी गंभीर समस्याएं आ जाती हैं जिससे निजात पाना मुश्किल हो जाता है। पर देखने में आ रहा है बड़े तो बड़े, छोटे जो युवा वर्ग के बच्चे भी हैं इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। यदि हम परिवार के हर एक सदस्य जागरूक हो जाएं तो इससे उस वर्ग को हम बचा सकते हैं। बच्चों में इसके सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में हम बातचीत करें। सबसे पहले बहनों, मैं हमेशा ही आपको ये बताती हूँ कि बच्चों से थोड़ा सा खुलकर बात करें। आज का वो समय नहीं रह गया है कि हम बड़े हैं तो हम माता पिता हैं, बच्चा छोटा है, हम जो कहेंगे वो बच्चा मानेगा। नहीं, वो टाइम आज के समय में नहीं रह गया। हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना ही पड़ेगा। यदि हो सके तो उनको कोई उदाहरण देके भी समझाएं कि देखिए उसने इसका सेवन किया और उसका दुष्परिणाम क्या भुगतना पड़ा। खुद एक अच्छा उदाहरण बने। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, ज्ञान तो या सीख की बातें बहुत सारी दे देते हैं लेकिन खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उसके उदाहरण स्वयं बनिए। बच्चों की संगति पे ध्यान दीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है बहनों ना, कभी कभी क्या करता है, आग को छूता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आग, हमें पता है कि उस बच्चे को पता नहीं है कि इस आग से उसका हाथ जल जाएगा, तो इसलिए हम खींच लेते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको खुद ज्ञान इस चीज़ का हो जाता है कि हाँ हम इसको छुएंगे तो हमारा क्या होगा, हाथ चलेगा, तब फिर उसके बाद वो उसमें हाथ नहीं डालता। इसलिए जब बच्चा छोटा है, जब टीन एज में बच्चे हैं, तो उनकी संगति पे विशेष ध्यान दीजिए कि वो कैसे बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ जा रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि उनको डांटिए, आप पीठ पीछे उन पर नज़र रख सकते हैं। बच्चों को खेल की तरफ, योग की तरफ, रचनात्मक कार्यों की तरफ उसे व्यस्त रखें। स्कूल और घरों में बच्चों को जागरूकता पूर्वक जो कार्यक्रम है वो ज़रूर दिखाएं। देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी शॉर्ट्स स्किट्स हम लोग को मिल जाती हैं जो कि हमें बच्चों को दिखानी चाहिए, जिससे कि उनके ब्रेन का, उनके दिमाग का विकास हो सके और वो जान सकें कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। बच्चे देश का भविष्य है, उन्हें तंबाकू जैसी हानिकारक आदतों से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए मिलकर स्वस्थ और नशा मुक्त पीढ़ी बनाने का संकल्प लें और इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम यह प्रण लें कि स्वयं भी तंबाकू से दूर रहेंगे और परिवार के आसपास के लोगों को भी उसके नुकसान के प्रति जागरूक रखेंगे। बहनों, एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि हमारे घर परिवार में कोई अगर इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाए तो हम कैसे उससे बच सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेके समझिए कि भाई एक पत्थर हम लेते हैं और एक कुत्ते को यदि हम मारते हैं तो देखेंगे कि वो जो कुत्ता है ना डर कर भाग जाएगा। अब वही पत्थर उठाइए और एक मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, फिर देखिए कि आपका क्या वो करेगी मधुमक्खी। पत्थर वही, आप भी वही, बस फर्क इतना रहता है कि भाई कुत्ता अकेला था इसलिए वो डर कर भाग गया, लेकिन मधुमक्खियां समूह में एकजुटता और एकता की शक्ति के साथ आप पर प्रहार करेंगी तो वो आपसे उससे बच नहीं सकते। यदि हम यही चीज़ अपने घर में भी फॉलो करें एकता के साथ, यदि हमारे घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है तो हम एकजुट होकर उसकी जो उस समस्या से निकालने की उसको कोशिश करें, ना कि हम उसे छोड़ दें। यदि हमने उसे छोड़ दिया तो वाकई में ज़िंदगी जो है उसकी एक जो है खौफनाक ज़िंदगी उसकी बन जाएगी इन सब चीज़ों के सेवन के लिए। तो आज के दिन हम संकल्प लें इन सब चीज़ों से अपने को और अपने परिवार को हम दूर रखेंगे।

बहनों, अब अपने जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करेंगे शौक को बनाए अपना रोजगार। भाई, आज के समय में केवल नौकरी की ही कमाई एकमात्र साधन अब नहीं रह गया। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई हुनर और शौक छुपा होता है। यदि सही दिशा और मेहनत मिल जाए तो यही शौक आगे चलकर हमारे रोजगार का माध्यम भी बन जाता है। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है तो किसी को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग, संगीत, लेखन, फोटोग्राफी, बागवानी या ऑनलाइन पढ़ाना। पहले लोग शौक को केवल समय बिताने का एक माध्यम बनाते थे और वो शौक ना उस वक्त की, अगर हम कुछ दशक पहले की बात करें तो वो शौक भी लिमिटेड ही होते थे। जैसे गाना गा लेना या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा लेना या जो है खाना बना लेना। लेकिन आजकल ना, जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती चली जा रही है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। भाई, अब ये सिर्फ एक मतलब जो है मनोरंजन का साधन नहीं रह गया, बल्कि आज के समय में डिजिटल युग जिसे हम कहते हैं, यही शौक एक अच्छी आय का जरिया बन चुका है। इसे तो सबसे पहले बहनों हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चीज़ का गुण है। हम खाना अच्छा बना लेते हैं, हम गा अच्छा लेते हैं, हम बजा अच्छा लेते हैं, या हम किसी को बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों से मोटिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको वो चीज़ पहचाननी होगी। छोटे स्तर पर ही कार्य शुरू करना चाहिए, निवेश बड़ा करके नहीं। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, आपने अपनी रसोई का काम शुरू किया, टिफ़िन का सिस्टम शुरू किया या कुछ भी आपने शुरू किया, पता चला आपने लाखों रुपए उसमें लगा दिया और उस वक्त वो उतनी स्पीड में नहीं बढ़ पाया तो आपका काफ़ी स्तर पर नुकसान हो सकता है। नई चीज़ों को सीखते रहें। भाई, नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि भाई पीछे रहना है, नहीं, हमें किसी से पीछे नहीं रहना है। आज की जनरेशन के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है, इसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ों को सीखना और जानना होगा। सोशल मीडिया का उपयोग करें और अपनी चीज़ों के

ग्राहकों पर विश्वास रखें और अपना विश्वास उन पर बना के रखें। जैसे कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो तो हम इस चीज़ के लिए लुक आफ्टर स्वयं करते रहें। जब काम हमारे शौक हों का हो तो मेहनत बोझ नहीं लगती और सफलता की राह भी आसान हो जाती है। इसलिए अपने हुनर को कम ना आके, क्योंकि आपका शौक ही आपका भविष्य बदल देगा। इसी बात पे एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ बहनों, जो मोटिवेशनल है, जब मैंने भी कहीं किसी से सुनी थी उसी को मैं सुनाती हूँ। भाई एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, उसके पैरों में एक पत्थर आया और ठोकर लग कर जो पत्थर था वो एक गुलाब की जो क्यारी थी वहाँ पे चला गया। और उस गुलाब की क्यारी में एक गुलाब का पौधा लगा था जिसपे एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल लगा था, और वो गुलाब के फूल को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था, बहुत नाज था, क्योंकि भाई सुंदर तो होता ही है गुलाब का फूल। उसने उसका पत्थर का उपहास उड़ाते हुए कहा कि यह भी कोई ज़िंदगी है, ठोकर, केवल ठोकर। अब जो है भाई पत्थर जो था उसका मन मसोक कर रह गया, करता भी क्या कि भाई उसको तो ठोकर मारी जा रही थी। इस बात का उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। भाई कुछ ही दिनों बाद एक राहगीर उधर से गुजरा और उसकी नज़र उस पत्थर पड़ी, उसने उसको उठाया और छेनी हथौड़ी से उसको तराशना शुरू कर दिया। अब भाई जब उसको तराशा तो उसके सारे जो विकार थे ना वो निकल गए और वह एक सुंदर प्रतिमा का रूप उसने ले लिया। अब जब उसने प्रतिमा का रूप ले लिया तो उसने जो राहगीर था जिसने उस पत्थर को उठाया था उसने उसको मंदिर में रख दिया। अब मंदिर में जब रखा उसको तो दूसरे दिन उसके ऊपर एक फूल आया, उसी पत्थर जो कि अब प्रतिमा का रूप ले चुका था उसके ऊपर एक फूल आया। उसने देखा, अरे ये तो वही गुलाब का फूल है, ये तो मेरे ऊपर आ गया भाई, मतलब मैं इतना मेरे अंदर जो विकारों को राहगीर ने हटाया उसके बाद मैं इतना ज़्यादा वो बन गया। लेकिन उसको इस बात का घमंड नहीं हुआ, वह सिर्फ मुस्कुरा दिया। फूल ने स्वयं भी शर्मिंदगी महसूस करी और बहनों उसके बाद उसको अंदर से ये महसूस हुआ कि कल मैंने इस पत्थर का जो है मजाक बनाया था, आज मैं ही तोड़कर इसके ऊपर चढ़ाया गया हूँ। तो जीवन की वास्तविकता यही है, क्योंकि जीवन की बाजी पलटने में बहनों देर नहीं लगती और समय हमारा कब परिवर्तित हो जाए, कौन सा हमारा गुण हमें कहाँ आगे लेके चले जाए, इस बात का धैर्य रखना चाहिए। बहनों भाई अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है अब एक गीत सुन लेते हैं जो कि केके की भावपूर्वक आवाज में गाया गया है। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। इसके संगीतकार विशाल शेखर हैं और गीतकार जावेद अख्तर है और फिल्म है इसकी फिल्म है भाई आप गेस करिए कि कौन सी इसकी फिल्म हो सकती है। मैं आपको इस गाने के बाद इसको बताऊंगी कि इस फिल्म का क्या नाम है, ठीक। और ये गीत सुनाने का भी मुख्य उद्देश्य बहनों ये है क्योंकि आज जो है के जो हैं जी जो थे गायक थे उनकी पुण्यतिथि है, तो आकाशवाणी परिवार की तरफ से उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि।

0: बहनों, अब हम बात करेंगे। भाई पहले तो मैं आपको फिल्म का नाम, मैंने आपसे पूछा था कि क्या है फिल्म का नाम, तो फिल्म का नाम था बहनों ओम शांति ओम। यदि आपने सही गेस किया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ढेर सारी तालियां। तो अब जो है हम थोड़ी सी बच्चों की फिर से बातों पे चलते हैं। भाई गर्मियों की छुट्टियां तो हो चुकी हैं, शुरू हो गई हैं, बच्चों के चेहरे पर उसकी खुशी साफ दिखाई भी दे रही है। पूरे साल पढ़ाई और परीक्षा के बाद के समय जो ये होता है, ये आराम करने और नई चीज़ों को सीखने और परिवार के साथ यादगार पल बिताने का भी होता है। सिर्फ मोबाइल और टीवी तक सीमित रहना छुट्टियों का सही उपयोग नहीं है। बच्चों को चाहिए कि वे अपनी रुचि के अनुसार कुछ नया सीखें, जैसे पेंटिंग है, संगीत है, डांस है, या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या आजकल बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि वो सीख सकते हैं। तो भाई अब हम बात करेंगे समर कैंप की। समर कैंप कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये व्यर्थ की चीज़ है, बेकार में बच्चों का समय बर्बादी होती है, साल भर तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, समर कैंप की क्या ज़रूरत है, स्कूलों में भी सिखाया जाता है। लेकिन नहीं बहनों, अगर हम समर कैंप में बच्चों को सिखाते हैं तो पढ़ाई के अलावा वो कुछ एक नई चीज़ को सीख पाते हैं। इस हेतु तो जो है हमारे भी शहर में, गोरखपुर में भी बहुत सारी जगह जगहों पे समर कैंप लगाए जाते हैं। कुछ लोग तो इसका महत्व समझते हैं, पर कुछ लोग इसे अनावश्यक बच्चों के ऊपर दबाव मानते हैं। पर ऐसा आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं है। यह बच्चों की पसंद की चीज़ें सीखने का समय होता है। समर कैंप केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का एक अच्छा माध्यम भी माना जाता है, जहां बच्चे नई नई गतिविधियां सीखते हैं। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ एक स्किल का भी विकास होता है। बच्चों का टीवी और मोबाइल स्क्रीन टाइम जो होता है वो भी कम होता है। यदि बच्चा आउट ऑफ स्कूल कुछ सीखा होगा तो उसका फ़ायदा उसे स्कूल के अंदर भी होगा, क्योंकि स्कूल्स में बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं जिसमें बच्चा आपका अच्छा प्रदर्शन करेगा। अभी मैंने कहा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होगा, तो आइए अब समझते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम और किस किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
1: के कदम देखो रम पम पम

0: भाई बहनों, चलते चलते थोड़ी सी मैं टिप्स, मैंने कहा था कि स्क्रीन टाइम बच्चों का कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। बच्चों के लिए एक निश्चित समय तय कर दें कि जैसे दिन में 1-2 घंटे ही स्क्रीन का उपयोग करेंगे। बच्चों को विकल्प दें, उन्हें खेल कूद, किताबें पढ़ने, पेंटिंग या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करें। माता पिता खुद भी उदाहरण बने। यदि हम खुद स्वयं मोबाइल लेकर व्यस्त रहेंगे दिन भर, तो बच्चे भी भाई वही देखेंगे, वही सीखेंगे। भाई आजकल तो सुनने में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं सुनने को मिल जाती है कि भाई माता पिता पता चला व्यस्त थे मोबाइल में और यहाँ बच्चे ने क्या कर दिया, क्या नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ों से हमें खुद का उदाहरण भी बच्चों को बन के बताना है। बच्चों के साथ समय बिताएं, बातें करें, कहानियाँ सुनाएं, इससे बच्चों के अंदर भावात्मक जुड़ाव बनेगा। भाई आजकल तो माएँ जो हैं, या हम कहें जो भी हैं बड़े, वो कहानी सुनाना भूल ही गए हैं। कहानी सुनने के लिए भी अगर बच्चा कभी कहता है तो याद करनी पड़ती है कि कौन सी कहानी बच्चे को सुनाएं। बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि स्क्रीन का अधिक उपयोग उनकी आंखों, नींद और पढ़ाई पर असर डाल सकता है। घर में बनाएं एक ऐसा जगह जहाँ पे जो स्क्रीन फ्री हो। घर की जगह कुछ ऐसी तय करें, जैसे बेडरूम है, डाइनिंग एरिया है, उस जगह पे बिल्कुल भी हम मोबाइल या अपना कोई भी चीज़ें ऐसे गैजेट ना लेकर आएं। रिवार्ड सिस्टम अपनाएं। अगर बच्चा बिना स्क्रीन के समय बिताता है तो उसे छोटे छोटे से इनाम दें। नोटिफिकेशन या ऑटो प्ले बंद कर दें। अक्सर बच्चे वीडियो के बाद वीडियो देखते चले जाते हैं। अगर ऑटो प्ले बंद होगा तो स्क्रीन पर बिताया गया समय खुद ब खुद अपने आप कम हो जाएगा। बहनों भाई, ये तो बातें हमारी बच्चों की हो गई, लेकिन इस समय जो है मौसम भी हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सी चेतावनी बीच बीच में देता चला जा रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, बाहर निकलिए तो पानी लेके चलिए, और भाई अपना ख्याल रखेंगे तो भाई हम तो आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को अब मैं समाप्त करती हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत, आकाशवाणी का इसी गोरखपुर केंद्र है। कोई व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनी। पंचदेव अपने पुत्र हीरो के लापता होने की सूचना हमें देते हैं। हीरो की उम्र है 10।

0: Vejo. Lambei 150 cm rang sevle ye dinank 28 अप्रैल 2026 की रात्रि से लापता के बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। पंचदेव ग्राम ककुआ थाना कोतवाली बासी जनपद सिद्धार्थनगर। बजरंगी मिश्रा अपनी पुत्री पूजा और फूल कुमारी के लापता होने की सूचना हमें देते हैं। फूल कुमारी की उम्र है 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंगोरा, ये दिनांक 7 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। बजरंगी मिश्रा थाना परसा पंडित जनपद सिद्धार्थनगर। घीसन अपने पुत्र गुरुदेव के लापता होने की सूचना हमें देते हैं। गुरुदेव की उम्र है 33 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, ये दिनांक 25 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। घीसम ग्राम फुलवरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर। सुंदरी के लापता होने की सूचना इनके पिता रामकरण हमें देते हैं। सुंदरी की उम्र है 18 वर्ष, लंबाई 4.5 फुट, रंगोरा, ये दिनांक 25 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। रामकरण पिता स्वर्गीय राम खेलावन पटवा थाना इटवा सिद्धार्थनगर। शिवांगी के लापता होने की सूचना इनके पिता हरिराम हमें देते हैं। शिवांगी की उम्र है 23 वर्ष, लंबाई 4 फीट 5 इंच, रंगोरा, ये दिनांक 8 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। हरिराम पुत्र अयोध्या ग्राम सोननगर पोस्ट इटावा सिद्धार्थनगर। मेनका के लापता होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। इनकी उम्र है 16 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंगोरा, ये दिनांक 5 मई 2026 से लापता हैं। अगर आपके पास इनके बारे में कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। अरविंद ग्राम सुपा बक्सी थाना जो कि उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर। कोई व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: ये आकाशवाणी गोरखपुर है। खेती किसानी कार्यशाला में लीजिए सुनिए डॉक्टर रामजीत यादव की वार्ता, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाएं।
3: किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कार्बन होता क्या है। कार्बन वैसे तत्व हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज है, जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसे जो है पौधे किसी भी रूप में अपने मिट्टी में संशोधित करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जब ये पौधों के द्वारा मिट्टी में इनकी मात्रा फिक्स हो जाती है, तब पौधे उसे अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में ले करके पौधों के डिफरेंट भागों में पहुंचाते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की मात्रा हम जो है दिन प्रतिदिन मिट्टी में डाल नहीं रहे हैं, जिससे हमारे मिट्टी का सेहत खराब होते जा रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम अपने मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। जैसा कि सभी किसान भाइयों को जानकारी है कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कुछ पोषक तत्व हैं जो प्रकृति ने इन्हें नेचुरली रूप से मिट्टी में देती है, जिनका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आज हम विशेष रूप से कार्बन को ही फोकस करेंगे कि आज हमारे मिट्टी में दिन प्रतिदिन कार्बन की मात्रा क्यों घट रही है और इस कार्बन की मात्रा को हम मिट्टी में कैसे बढ़ाएं, उसका कैसे मैनेजमेंट करें, जिससे हमारा सॉयल हेल्थ मेंटेन रहे। तो किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते जा रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी लगा करके मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनका दोहन करते जा रहे हैं। इससे हमारे मिट्टी का हेल्थ जो है खराब होते जा रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम जो है अपने मिट्टी में ये जो पोषक तत्व घट रहे हैं, जो दूसरे पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें पौधों को अवेलेबल कराने में या उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं, उनकी मात्रा अगर हमारे मिट्टी में कम हो जाए

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है, उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। मीडियम वेव 330.3 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज एवं FM बैंड 10.1 मेगा हर्ट्ज पर 2:30 हुए हैं। कुछ बोलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से नेपाली कार्यक्रम।

0: राम रस गबे ना जाने जाने की ना जाने जाने होने जाओ है जाओ
1: आगे बने उतई ना लागे हो पर कहा

नमस्कार आदरणीय श्रोता, विविध वार्ता को कार्यक्रम में यार हार्दिक स्वागत न्यानो अभिवादन म संचालिका सुप्रिना को तर्फबाट। श्रोता आज को विविध वार्ता को विषय तर्फ जाना अगि सुनौ यो आधुनिक गीत।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 330.3 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बज रहे हैं। मीडिया वेव के मीटर पर हमारे प्रसारण अभी पर संपन्न होते हैं। एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। हमारी आपसे मुलाकात मीडिया वेव के मीटर पर शाम 5 बजे होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: उनकी यादों की

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी।
3: है ना, मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना
2: होगा
3: तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
2: जी। बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा जी।
3: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
2: जी,
3: रावल जी।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
2: जी।
3: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
2: अच्छा।
3: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
2: बन गए। थी कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए?
3: कंगन फिल्म खेली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए। उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
2: जी, एक्टर।
3: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
2: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
3: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
2: वाह क्या बात है,
3: हेमंत कुमार की आवाज में। ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
2: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
3: हाँ
2: जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम।
0: जी।
1: हाँ, तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: नहीं थी जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत
0: जी।
1: सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
0: जी।
1: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: जी, वो गर्म है।
1: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ, और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
0: अच्छा
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा। आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं
0: अच्छा
1: कुछ लेना नहीं चाहता हूँ,
0: जी
1: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
0: हाँ
1: होगी,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
0: पिता जी
1: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
0: अच्छा
1: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
0: अरे हाँ
1: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
0: जी
1: लेके।
0: जी
1: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
0: जी
1: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
0: जी जी
1: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
0: जी
1: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो
0: विवाह
1: यूनियन था
0: हाँ वो संपन्न
1: विवाह
0: हुआ
1: का, तो वो खुशी
0: जी
1: खुशी उसकी समापन हुआ,
0: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
1: एक
0: उस
1: पानी बन के
0: दंपत्ति
1: रही।
0: जीवन में।
1: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
0: जी ये सबसे बड़ी बात है जी
1: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
0: वाह
1: मतलब
0: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
1: ऐसी
0: में की
1: थी।
0: गई
1: हाँ
0: नाना नानी के द्वारा।
1: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
0: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो रहे।
1: जी। मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊजी, वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था। क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे, वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है, वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में।
0: तब
1: भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए, तब वो आए थे मुंबई।
0: जी, हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त। तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है, वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
0: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था, जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
0: जी,
1: थी
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
0: जी
1: कविता
0: जी
1: लिखी
0: बिल्कुल।
1: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
0: बहुत खूब।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
0: जी
1: ये यही
0: जी
1: कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त
0: उसी
1: लिखी।
0: दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
1: अंकुर
0: और
1: पैदा
0: वहां
1: हुआ।
0: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
0: जी
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि ये कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे।
0: जी
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग। और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत है वो आज भी लोगों को

0: देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
0: जी
1: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
0: कश्ती
1: निकाल
0: निकाल
1: के,
0: के,
1: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी
1: सही
0: बात ये
1: बात है।
0: है ना? और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई, और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, ये इस गाने के
0: कोई
1: सिवाय वो पूरी नहीं
0: गाना
1: होती।
0: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
1: जी,
0: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही गीत
0: साबरमती के
1: साबरमती
0: संत।
1: के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मित्तल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील जाति,
1: तो भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल,
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल, वो दर्शन
1: एक छोटे
0: जो
1: पिंजरे
0: दिया।
1: में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे संसार की हालत
0: हाँ,
1: क्या हो गई भगवान,
0: हाँ,
1: कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊं,
0: देख ले दर्पण में,
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास,
1: हाँ,
0: और आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
1: सुनते
0: करते
1: हैं।
0: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो

0: 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में। यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
0: हाँ।
1: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो?
0: हाँ।
1: मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: में आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूं, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा लेते हैं।
1: अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में
0: कुछ
1: लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: दादी कौन सा प्लांट है?
8: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
9: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
7: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
9: क्यों?
7: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
9: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
10: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
11: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
12: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार। आज के सोमवारी कार्यक्रम में मैं प्रकृति आप सभी युवाओं का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज के सुविचार से। साथियों, जीवन में आपकी कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने काम का साथ कभी भी मत छोड़िएगा। यूँ समझिए कि आपके सुख दुख हर वक्त का साथी, आपके द्वारा सीखा गया जो भी कौशल है और उसके द्वारा उसके माध्यम से जो कोई भी आप कार्य करते हैं, वही आपके बुढ़ापे का सबसे मजबूत लाठी बन के रहेगा। इसलिए अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके साथ कोई साथी बन के बिना किसी शिकायत के रहे और आपको आगे भी बढ़ाता रहे, तो वो आपका काम है। इसलिए जीवन में अपने कार्य को अपना साथी ज़रूर बनाए रखिएगा। ये था आज का सुविचार, लेकर चलते हैं आपको चर्चा की ओर। साथियों, आज का विषय एक ऐसा विषय है जिसमें अगर विशेष तौर से कोई युवा या कोई ऐसा साथी हमारा आज अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हो, उसके लिए ये पूरा विषय काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो हमें दूर से ये चमक दमक भरा क्षेत्र काफ़ी अच्छा लगता है। हमें देख के लगता है कि इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ सरल होगा, बहुत कुछ आसान होगा। हम लोगों को कैमरे पे देखते हैं, टीवी पर देख रहे होते हैं और हमको बहुत अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं, काश हम भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना पाएं। लेकिन अगर आपको इस क्षेत्र के दूसरे पहलू की बात बताएं तो जो चीज़ बाहर से देखकर जितनी खूबसूरत और सुंदर लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो भीतर से भी उतनी ही सुंदर और सरल हो। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पल पल आपको चुनौतियों का सामना करना होगा। विशेष तौर से अगर आप एक एंकर, रिपोर्टर या ज़मीनी स्तर पर उतरकर देश की समस्याओं को दिखाकर काम करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आपको कई प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको किसी क्षेत्र में करियर बनाना है तो आपको ये आकलन करना होगा कि आपकी रुचि किस ओर है। क्या आप लिखना पसंद करते हैं? अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे अगर कैमरे पर बोलना है तो लिखने की क्या आवश्यकता है। आज का दौर एक ऐसा दौर है जो पैकेज के तौर से एक व्यक्ति में तलाश करता है कि उसमें सभी प्रकार के गुण हों। यानी कि अगर आप कैमरे पर अच्छा बोल लेते हैं, आपकी प्रस्तुति अच्छी है, तो यह काफ़ी नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अच्छा लेखन कर सकें। लेखन के साथ साथ आपकी प्रूफ रीडिंग स्किल अच्छी हो। प्रूफ रीडिंग के साथ साथ आज का दौर ग्राफिक्स और एडिटिंग का है। आप बहुत महारत तो हासिल ना हो आपको एडिटिंग में, लेकिन आपको बेसिक एडिटिंग स्किल्स भी आने चाहिए। आपको SEO यानी कि सर्च इंजन ऑपरेशन की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी विषय पर आप 400, 500 या कभी कभी 1000 शब्दों में अगर लिखने की ज़रूरत पड़े तो क्या आप लिख सकते हैं, या आप केवल एक ब्रेकिंग न्यूज़ एंकर तक सीमित रहना चाहते हैं? डिजिटल दौर है जिसमें 1 मिनट, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड में भी आपको अपनी बात सीमित रख के लोगों तक पहुंचानी होगी और कई बार विस्तार से भी लोगों को जानकारी देनी होगी। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि इस पूरे क्षेत्र के लिए अगर आपको तैयार होना है तो आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। और अगर आपकी रुचि है, क्रिएटिविटी से आप भरे हुए हैं, तो आपको इस क्षेत्र में ज़रूर आना चाहिए। और भी इस विषय पर आपको जानकारी दूंगी, लेकिन आइए पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक प्यारा सा गीत और हम चर्चा कर रहे थे पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर के बारे में। पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट क्षेत्र है। इसमें आपके पास ऐसा नहीं है कि आप सीमित हैं। अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज आती है, अलग अलग प्रकार की रुचियों के अनुसार लोग इसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको बताऊं तो अगर आप सिर्फ एक एंकर या एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं, अगर आपके विचार हैं एंकर और रिपोर्टर बनने के, तो एंकर रिपोर्टर बनने के लिए आपको लेखन, एडिटिंग स्किल, अच्छा लेखन, मतलब आपके लेखन में इतनी गुणवत्ता होनी चाहिए कि आप चाहे वो अखबार के लिए लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग स्किल अलग हो। और विशेष तौर से ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमेशा प्रिंट के ओर से शुरुआत करें, प्रिंट मीडिया से शुरुआत करें। अब ये तो बात रही एक एंकर और रिपोर्टर की। एंकर रिपोर्टर के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपको किसी भी कॉलेज से आप BJ या MJ यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके डिप्लोमा डिग्रीज़ भी होती हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, तो आप इसको करने के बाद से किसी भी बड़े स्तर के चैनल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सरकारी नौकरियां भी इससे जुड़ी हुई आती हैं, लेकिन आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं एक स्थायी नौकरी इस क्षेत्र में मिलेगी, और ये विशेष तौर से एंकर और रिपोर्टर के लिए है। इसके साथ ही अगर आपकी इस क्षेत्र में रुचि है बतौर कैमरा पर्सन, या एडिटिंग में आपकी रुचि बहुत अच्छी ज़्यादा है, आज के समय में अगर आप जो भी वीडियो देखते हैं उसमें एक एंकर से भी बड़ी भूमिका एक एडिटर की होती है कि कितना अच्छा भी हम कैमरे पर अपनी प्रस्तुति दे लें, अगर हमारे पास एक अच्छा एडिटर ना हो तो हम अपने वीडियोज़ को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, अलग अलग प्रकार के वीडियोस को बनाना पसंद करते हैं और आपका मन लगता है उस कार्य में, तो एडिटर के लिए आज के इस क्षेत्र में काफ़ी वास्ट अपॉर्चुनिटी है। साथ ही आपको बताना चाहूँ कि कैमरा पर्सन, राइटर, रिसर्चर, सबकी ज़रूरत इस क्षेत्र में पड़ती है, तब जाकर आप एक बेहतर कहानी तैयार कर पाते हैं। तो आपको बताऊँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको चुनौतियों के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा और निरंतर आपको पढ़ते रहना होगा, निरंतर आपको नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, आपको लेखन पर अपने हाथ मजबूत करने होंगे। और साथ ही एक समय के बाद एक वक्त आता है जब एक पत्रकार किसी एक सर्टेन बीट पर लिखने लगता है, यानी कि उसकी एक स्ट्रीम हो जाती है, एक बीट हो जाती है जिस पर वो सारी जानकारी दे रहा होता है, वो होती है उसकी परिपक्वता का, उसका वो समय होता है। जैसे कि कुछ आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देखते होंगे, या इसके साथ ही आप किसी लाइफस्टाइल या आप किसी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को देखते होंगे जो कि सिर्फ राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं या राजनीति से जुड़े लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये पूरा क्षेत्र, जब आप एक बार इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको बहुत वक्त लगता है खुद का आंकलन करने में, खुद को समझने में, और भागेगा नहीं, शुरुआत में आपको डर बहुत ज़्यादा लगेगा कि इस क्षेत्र में मैं टिक नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर आपने एक बस चीज़ अपने भीतर ठान ली कि मुझे सीखना है, लगे रहना है, तो आप अपनी जगह कुछ वक्त में ज़रूर बना लेंगे। साथियों, ये थी चर्चा, इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत और अब इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। आज के आधुनिक युग में युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाते हैं। किसी भी राष्ट्र को भविष्य उसके युवाओं की ऊर्जा, स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसे में व्यायाम युवाओं के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का भी आधार है। वर्तमान समय में तकनीक और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण युवाओं की जीवन शैली काफ़ी हद तक निष्क्रिय होती जा रही है। घंटों मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया पर समय बिताने से शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप मोटापा, तनाव, थकान और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में नियमित व्यायाम एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आता है। साथियों, व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय और फेफड़े स्वस्थ होते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है और इससे व्यक्ति अनेक बीमारियों से सुरक्षित रहता है। और इसके साथ साथ व्यायाम शरीर को जितना स्वस्थ रखता है, उतना ही मन को भी स्वस्थ रखता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। व्यायाम करने से तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं में कमी आती है। आज आवश्यकता है इस बात की कि युवा व्यायाम को अपने दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाए। कम से कम 30 से 60 मिनट तक किसी न किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम, योग या खेलकूद अवश्य करना चाहिए। कहा जा सकता है कि स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं और स्वस्थ युवाओं के निर्माण में व्यायाम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक युवा होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करना चाहिए। चर्चा और भी होगी, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत और अब इसी के साथ वक्त हो चला है प्रश्नोत्तरी का। आज का प्रश्न है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये स्लोगन किससे जुड़ा हुआ है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये स्लोगन किससे जुड़ा हुआ है? साथियों, इसका उत्तर आपको कल के कार्यक्रम में मिलेगा। तो अब इसी के साथ आपकी दोस्त प्रकृति के जाने का वक्त हो चला है। मिलते हैं अगली बार कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: पंचो जय हिंद भैया, हो देखा नारा लगल और अपने पंच भाई लोगन का बैठकी भी
4: सही कला भैया।
3: भैया देखा हमन के पंच भाई लोगन के कई तरह के भैया रोज जानकारी उपलब्ध करावल जाला, जौने से पंच भाई के जिंदगी बड़े अच्छे से गुजर बसर हो सके,
4: स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें
3: एकदम भैया। और देखा स्वस्थ रहले बदे ना कई ठू ऐसा दिवस बाद जौने के हमन के मनावल जाला और वह दिवस पे ही संदेश देने की कोशिश कर जाला कि पंच भाई अगर ठीक से जागरूकता रखे हैं तो जरूर स्वस्थ रहे हैं।
4: सही कहला भैया। अब जैसे बहुत से समाज में होला धीरे धीरे भैया देखा एक बाट कि गाँव में देखा भैया हो तंबाकू खेले के प्रचलन बाट
3: एकदम भैया
4: भैया शुरुआत में वही भाई केहू

0: यार दोस्त अब मिलल उनके धीरे से अपने भैया तू ही तन चीखा तू ही देखा का होला धीरे धीरे धीरे लत पकड़ ली समस्या हो
1: तो
0: जाए।
1: भैया आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और यह दिवस पर पंच भाई लोगन के यह बतौले के भाई प्रयास हमन के कैल जाए कि ऐसे बहुत बड़ा जनहानि होले भैया, बीमारी हो जाले जौन ठीक नहीं होले, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाला। ये नाते से भैया तंबाकू का सेवन नहीं करे
0: नहीं
1: के
0: करे
1: चाहिए।
0: चाहिए भैया। देखा अपन सांस के दिक्कत हो जाए फेफड़ा में अपन के जैसे कैंसर का हो जाए हैं हृदय में अपन दिक्कत हो जाए अनेक प्रकार के अपन धीरे धीरे धीरे अपन मुंह में गला में सब समस्या हो जाए। यही वजह से सब WHO अपन के 1987 में आज के दिन 31 मई के हर साल तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनवले के ई घोषणा कैले।
1: तब यह देखा तंबाकू निषेध दिवस पर पंच भाई लोग एकदम ये शपथ ले कि हमन के अपने आप के स्वस्थ रखल जाए, और जौन भी हानिकारक चीज़ बा ओके सेवन से जरूर बचल जाए। भैया हो एगो लघु गीत, फिर अपन बैठ के आगे बढ़े।

0: हाँ भैया, देखा हो कितना निम्न ही गीत गौनई सुने के मिलल, कमला प्रसाद कमल के स्वर में दिहल जे धन्यवाद। अब भैया देखा, हमन के स्वास्थ्य के बात करत रहली हैं, तो भैया अपने शरीर में कई ठे ऐसा अंग बा भैया जौन अगर खराब हो जा तो मनई के जिंदगी भैया चल नहीं सके।
1: सही कल भैया, परेशान हो जाला
0: एकदम भैया। देखा ये नाते बहुत बचा के रखे के चाहिए, और देखा ये नाते कोनो कोनो अंग ऐसा बा प्रकृति के तरफ से, भगवान के तरफ से हमन के दू दू ठू मिलल बा है कि अगर एक ठे भैया खराब
1: हो गए तो दूसर का काम ले दे।
0: अब सोच सकाला कि एक अंग मतलब एक ठे अगर दांत खराब होके निकलवा दिहल गिल भैया तो दूसर दांत लगवाले खातिर आपके बढ़िया लगवाए वो तो 20-25 हज़ार रुपया तो देही के। अब सोची कि दांत इतना महंग बता आँखी के इतना महंग हुई।
1: सही कहला भैया।
0: एक अंग अगर अपन देखल जा शरीर तक अरबन के बा भैया।
1: भैया सही कहल, अनमोल बा,
0: अनमोल बा। अब पंच भाई लोग पर ध्यान नहीं देला तो पंच भाई लोग के ध्यान देवे के चाही, और यही नाते आज अपन पंच भाई बैठकी में सुने गुर्दे में खराबी के लक्षण और बचाव के बारे में डॉक्टर अनुपमा कॉल से बतियाओ था भैया विनय कुमार।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अनुपमा कॉल। आप हैं SGPGI लखनऊ में गुर्दा विज्ञान विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक। डॉक्टर साहब, आपको फोन लाइन से जुड़ने के लिए हम सब स्वागत करते हैं आपका। आप ये बताएं कि मरीज को कैसे पता चलता है कि हमारे गुर्दे में खराबी आ रही है, लक्षण क्या प्रकट होने लगते हैं, या गुर्दा किस तरह का संकेत देता है शरीर के बाहरी हिस्सों में?
3: नमस्कार। ऐसा है कि अगर हम किडनी की बीमारी को समझें, उसे एक साइलेंट किलर की तरह समझा जाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्यवश 90वीं सदी से मरीज जो हैं अपनी बीमारी के लक्षणों को देख ही नहीं पाते, और गुर्दा रोग इतना अधिक मात्रा में पहुंच जाता है और तब उनको बीमारी के बारे में पता चलता है। परंतु देखिए, जो भगवान है उसने जीवन बनाया है, उसने हमारे अंग बनाए हैं, और गुर्दा अपने छोटे छोटे संकेत बीमारी के बारे में बताता रहता है, परंतु उसको समझना और उसको जानना जरूरी है। सबसे पहली संकेत जो ये होता है, पैरों में या एड़ी के आसपास सूजन का आना, कमजोरी, थकान, भूख में कमी होना, हीमोग्लोबिन का स्तर कम होना, पेशाब की आवृत्ति में परिवर्तन आना, और कभी कभी आप देखते होंगे रात के समय हम यूजुअली पेशाब कम जाते हैं, परंतु रात के समय सामान्य से ज्यादा पेशाब जाने लगे तो वो भी गुर्दे का एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि इन मरीजों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है और उनको ही गुर्दे रोज ज्यादा रहते हैं। तो यदि इन मरीजों में उच्च रक्तचाप रहे और सांस फूले, ये भी अंदेशा देता है कि हो सकता है इस मरीज को गुर्दे की बीमारी हो। स्त्रियों के मासिक चक्र में अनियमितता और पुरुष में नपुंसकता भी ये बता सकता है कि हो सकता है गुर्दे में खराबी हो।
2: डॉक्टर साहब, सामान्यतया गुर्दे में खराबी कितने तरह की होती है? आमतौर पर तो लोग यही समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराए और गुर्दे में पत्थरी निकल गई। इसके अलावा और कौन कौन कारण होते हैं कि गुर्दे में खराबी होती है?
3: देखिए, आपको समझना है कि गुर्दे की बीमारी जो अमूमतः होती है वो अलग अलग कारण से हो सकती है। एक बीमारी होती है, हमेशा मरीज अक्सर पूछते हैं कि क्या बीमारी हमारी हमेशा ठीक नहीं होगी, क्या हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये समझना जरूरी है कि कुछ बीमारियां होती हैं जो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उत्पन्न होती है। उन कंडीशंस को हम एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब अचानक किडनी की दिक्कत हो जाना, ऐसी जो बीमारियां होती हैं उसको अगर समय पे इलाज किया जाए तो गुर्दे की बीमारी को रोका जा सकता है और संभाला जा सकता है, और इवन कंप्लीट रिकवरी भी देखी जाती है। परंतु जिसके बारे में सबसे ज्यादा गंभीरता से समझना चाहिए वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, अर्थात किडनी की खराबी जो 3 महीने से ऊपर हो जाती है, उसका वापस ठीक होना नहीं पॉसिबल हो पाता है। मुख्यतः क्योंकि हमारे जीवन की इतनी आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, उसमें मधुमेह और जो उच्च रक्तचाप है वो मुख्य कारण है गुर्दे को खराब करने के लिए। वो कारण हैं जो कि गुर्दे को बहुत अधिक मात्रा में किडनी डिजीज के मुख्य स्रोत होते हैं। इसके अलावा कुछ गुर्दे रोग वंशानुगत कारणों से भी होते हैं, जिसे मैं बता रही हूँ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अर्थात गुर्दे में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे बन जाते हैं और उसके कारण गुर्दा खराब हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, पथरी, प्रोस्टेट की ग्रंथि का बढ़ना, मूत्र पथ में रक्त आना या थक्के जम जाना, वो भी गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, जिसे ल्यूपस होता है, जिसके कारण खाली गुर्दे को ही नहीं बाकी जिस्म के बाकी अंगों को भी वो प्रभावित करती है और इसके कारण शरीर में सूजन आना आती है और गुर्दे की विफलता का भी खतरा रहता है। परंतु एक बात बहुत जरूरी है समझना, जो मरीज बार बार दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उसमें गुर्दे की विफलता होना अधिक रहता है। इसके अलावा दिल के दौरे पड़ना, दिल की बीमारी अथवा जिगर की विफलता भी गुर्दे को हानि पहुंचा सकती है।
2: डॉक्टर साहब, किसी मरीज का अगर गुर्दा खराब है तो क्या उसके पेशाब में, रंग में या उसके दुर्गंध में कोई फर्क पड़ता है?
3: देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, अमूमन लोग मरीजों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि ये संकेत वो तब जब जानेंगे तभी ना पता चल पाएगा। सूजन आना, जैसे मैंने बताया, पेशाब की मात्रा में कमी आना, रात में अधिक पेशाब करना, ये एक ऐसे संकेत हैं जो बॉडी आपको देती है, उनको अगर समय पर पहचानेंगे तो गुर्दे की बीमारी के बारे में जान पाएंगे। परंतु कुछ लोगों को पेशाब के रास्ते खून आना ये भी संकेत करता है, या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना या बार बार पेशाब करने की इच्छा करना ये भी संकेत करता है कि हो सकता है गुर्दे की बीमारी हो, और उनको इन संकेतों को ध्यान से समझना चाहिए।
2: बहुत लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, पैर हमेशा नीचा करके बैठते हैं, ऑफिस से जब घर आते हैं तो एड़ी के पास सूजन होती है, रात में सोए और सवेरे फिर वो सामान्य अवस्था में लौट आती है, तो क्या ये भी गुर्दे के खराबी के संकेत हो सकते हैं या कोई अन्य कारण है?
3: देखिए, सूजन पैरों के अंदर आना अमूमन कभी कभी किस किस कारणों से हो सकते हैं ये समझना है। खाली गुर्दे की बीमारी के कारण ही सूजन नहीं आ सकती, कई लोगों को हार्ट की दिक्कत होती है उसकी वजह से सूजन आ सकती है, शरीर में प्रोटीन की कमी हो या शरीर में खून की कमी हो उसके कारण से भी सूजन आ सकती है। कुछ दवाइयां होती हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां, जैसे एम्लोडिपिन लेते हैं, उससे भी पैरों में सूजन आ सकती है। परंतु ये सूजन के साथ साथ अगर अन्य संकेत समझ में आते हैं तो उनको हमें जरूर से जरूर गुर्दे की जांच करनी चाहिए।
2: पेशाब में कठिनाई, पेशाब का कम होना या रात में बार बार पेशाब का होना या पेशाब को रोक के रखना, क्या ये भी गुर्दे को खराब कर सकता है?
3: देखिए, जो मैंने बोला कि रात में पेशाब जो मरीज अधिक जाते हैं ये संकेत है गुर्दे की बीमारी का, परंतु जो मरीज पेशाब रोकते हैं उनमें पेशाब का इन्फेक्शन होने का रिस्क रह सकता है, परंतु उनके कारण अगर रुकावट बनी रहे और अन्य कारण से, जैसे प्रोस्टेट बड़ा है उसके कारण रुकावट हो रही है और वो कारण पेशाब के इन्फेक्शन का कर रहा है, तो उसके कारण पेशाब के रास्ते में सूजन आकर गुर्दे को खराब भी किया जा सकता है। परंतु आपको ये बात समझना है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि के बढ़ने से जो गुर्दे खराबी होती है वो तुरंत नहीं होती है, वो ग्रेजुअल स्लोली होती है, परंतु ये आपको समझना है अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट हो रही है तो उसका ध्यान देना अनिवार्य है।
2: ढेर सारे ऐसे मरीज हैं जिनको यूटीआई बार बार हो जाता है, यह भी क्या गुर्दे को खराब कर सकता है?
3: जी, मैं जैसे बता रही हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि जो गुर्दे के मरीज होते हैं उनको अगर पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता है तो ये गुर्दे को खराब कर सकता है। और ये जो कभी कभी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पेशाब के रास्ते की ऐसी आकृति बनी होती है, जो पेशाब का रास्ता ऐसा बना होता है जिसके कारण से बार बार गुर्दे में जाकर ये पेशाब इन्फेक्शन कर सकता है, ऐसे कंडीशन में गुर्दा खराब भी हो सकता है।
2: डॉक्टर साहब, खास तौर पर जब जांच से पता चलता है कि फला मरीज के गुर्दे में पथरी है, ढेर सारे लोग दावा करते हैं कि ये पथरी हम दवा खिला के निकाल देंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर पानी की मात्रा बढ़ा दें तो गुर्दे की पथरी निकल सकती है, ढेर सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अब पथरी का आकार इतना बढ़ गया है कि बगैर ऑपरेशन के नहीं निकल सकता है, ये कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब दवा से गुर्दे की पथरी निकल सकती है, और कौन ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हर हालत में इसका ऑपरेशन ही इलाज है?
3: देखिए, ये माना जाता है जो अगर पथरी छोटी होती है अर्थात उसका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है तो उम्मीद की जाती है कि वो पेशाब के रास्ते में निकल जाए, क्योंकि जो छोटी पथरी होती है वो दर्द महसूस करवाती है रास्ते में पास होने के लिए, तो मरीज को उसके बारे में अंदेशा हो जाता है। परंतु यदि किडनी में पथरी पड़ी रहती है काफी समय तक और उसका साइज अधिक होता है तो वो हमेशा पेशाब के रास्ते में अपने आप से नहीं निकल सकती, उसके लिए लिथोट्रिप्सी या फिर लेप्रोस्कोपी के थ्रू गुर्दे के रास्ते से उसको निकालना पड़ता है। पथरी बहुत समय तक रह जाने पर, रुकावट करने पर और उसके कारण इंफेक्शन होने से गुर्दे को नुकसान पहुंच सकता है, और ये भी हो सकता है कभी कभी कि ये गुर्दा विफल हो जाए।
2: पथरी के कारण क्या गुर्दे में कैंसर भी हो सकता है?
3: देखिए, अमूमन पथरी के कारण कैंसर तो नहीं हो सकता, परंतु अगर पथरी के साथ साथ अन्य कोई परेशानी भी हो जो कैंसरस रूप में धारण करके बन सकती है तो उससे कैंसर का भी रिस्क रहता है।
2: डॉक्टर साहब, एक बार अगर गुर्दे से पथरी निकाल दी गई ऑपरेशन करके तो क्या पथरी बार बार बनने की संभावना बनी रहती है?
3: देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पथरी बनती क्यों है। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि कुछ मरीजों में पानी की कमी होने आने से या फिर कई मरीजों को टेंडेंसी रहती है पथरी बनने की, उन लोगों को अंदर यदि पथरी बार बार पड़ रही है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए और उसके मुख्य कारण को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन और जांच करानी अनिवार्य होनी चाहिए।
2: गुर्दे में अगर खराबी आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्या खान पान में और दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए?
3: देखिए, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिन मरीजों को गुर्दे की खराबी होती है उनको अपना वजन नियंत्रण में रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर और अगर उनको मधुमेह है तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए, शराब अथवा सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, नियमित मात्रा में नमक और चीनी का सेवन करना चाहिए, और अगर उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक आ रही है और गुर्दे में खराबी है तो ऐसे में अपने अंदर प्रोटीन की मात्रा। परंतु ये भी समझते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऐसे रसायन होते हैं जो पेशाब के रास्ते निकलते हैं और यदि गुर्दा खराब हो जाता है तो शरीर में रुकने लगते हैं। उससे मुख्य एक रसायन होता है पोटेशियम, और ये पोटेशियम पेशाब के रास्ते ही निकलता है, गुर्दा छान कर उसको बाहर निकालता है। परंतु जिस मरीज में गुर्दा खराब होता है इसका बनने की हमेशा एक हमारा आवा एक हमारा रिस्क रहता है, तो ऐसे मरीजों में हमें पोटेशियम वाली चीजें जो कि पत्ते हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, फल है, इन सब चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें इतना पानी पीना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त हो। अब एक पानी पीने दिक्कत है कि जिन मरीजों में गुर्दे की दिक्कत रहती है और उनका गुर्दे के रास्ते प्रोटीन निकल रहा होता है और ये गुर्दा पानी को फिल्टर पूरी तरह से नहीं कर पाता है तो पानी शरीर में अधिक पानी पीने से ये पानी पेशाब के रास्ते नहीं निकल पाता है और शरीर में रुकने से उसमें सूजन आती है और सांस फूलने का भी ऐसे कंडीशन में रिस्क रहता है। इसके अलावा मरीज को ये भी ध्यान रखना है कि वह अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा नियंत्रण में रखे। इसके साथ क्योंकि गुर्दे के मरीजों में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है तो अपना हीमोग्लोबिन को दवाओं के आधार पर और इवन एरिथ्रोप्रोटीन जैसे एक जो हार्मोन होता है जो गुर्दे से बनता है और जब गुर्दा खराब हो जाता है उसका निर्माण होना कम हो जाता है तो उसको इंजेक्शन के द्वारा भी लेने की आवश्यकता पड़ती है।
2: डॉक्टर अनुपमा कौल जी, आप USGTGI में वरिष्ठ चिकित्सक हैं और आज आपने टेलीफोन लाइन के माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी दी कि गुर्दे में अगर खराबी हो रही है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं और ऐसे में हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
0: हाँ भैया, देखा हो, इतना बढ़िया जानकारी मिलल गुर्दे में खराबी के लक्षण और बचाव डॉक्टर अनुपमा कौल से बतिया होता है। विनय कुमार भैया ही के साथ अपने बैठकी के समय समाप्त हो चल जा। पंचो जय।

अभी हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वैष्णवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 134वां कड़ी में देश विदेश के लोगन से अपन विचार साझा कैले। उहां के कहनी कि सरकार देश के अमूल धरोहर के संरक्षित रखे बदे लगातारे कोशिश कर रहल ह। उहां के बतौनी कि ज्ञान भारतम अभियान के जरिया से छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठवां सतवां शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ल दुर्लभ तामा के तीन गो पट्टिका मिलल ह।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी देश के लोगन से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान ढेरी सावधानी बरतले और सरकारी दिशा निर्देशन के पालन करे के अपील कैले हैं।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम के चर्चा करत के कहले कि भारतीय आम विश्व बाजार तक पहुंच बनैले है और आम हमन की कृषि अर्थव्यवस्था बदे बहुत जरूरी है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में एगो नहर में गंगा डॉल्फिन के बचावे वाले वीडियो के भी चर्चा कैले। उहां के कहली कि डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एके एगो चलत फिरत अस्पताल के तरियन तैयार कैल गेल है। खाद के संतुलित आ उचित इस्तेमाल के बढ़ावा देवे खातिर एक महीना तक चले वाला खेत बचाओ अभियान बेहने से शुरू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहलन कि खेत, किसान और गांव के जोड़त ई अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर चलावल जाए के चाहिए। नई दिल्ली में भइल एगो उच्च स्तरीय बैठकी में उहां के कहली कि अभियान के मुख्य जोर खाद के संतुलित आ सही इस्तेमाल, सतही मौसम के चुनौती के देखत किसानन के समय पर सलाह, पंचायत स्तर पर किसानन के भागीदारी और गांवन के सीधे सरकारी योजनन के लाभ पर है। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के आयोजन कैल गए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित भइल ई परीक्षा 72 जिलन के कुल 1011 परीक्षा केंद्रन पर संपन्न भइल। परीक्षा के निगरानी खातिर एगो हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनावल गइल रहल। प्रशासन कड़े सुरक्षा के इंतजाम कैले रहल। परीक्षा के सुचिता बनावे रखे खातिर सीसीटीवी से निगरानी कैल गइल रहल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कहले बा कि ओकर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल कल 1 जून से चालू हो जाए। आवेदन करे के इच्छुक विद्यार्थी लोगन के उत्तर पुस्तिका के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे खातिर ई पोर्टल शुरू कैल जा रहल बा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जून महीना में बिजली बिल पर 10% अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करे के निर्णय ले लेबा। अगला महीना उपभोक्ता लोगन के अपन बिजली बिल में 10% ज्यादा भुगतान करे के पड़ी। प्रदेश के अधिकतर जिला में तेज बयारी चलने और बरखा होके से तापमान में गिरावट दर्ज कैल गई बा। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत कुछ जिलन में आज घाम निकलने से उमस भरल गर्मी के सामना करे के पड़त बा। उहर मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 56 जिलन में आंधी या बरखा के अलर्ट जारी कैले बा। ई जिलन में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलन शामिल है। मौसम विभाग कई जगहों पर तेज बयारी के साथ बिजली कड़के के अनेसा जतौले बा। समाचार समाप्त भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार देश की अमूल धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है, इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित ये परीक्षा 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कुछ जिलों में आज धूप निकल जाने के चलते उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 56 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: पंचों जय जवान जय किसान। भैया वो देखा आपने, पंच भाई लोगों के बैठ की नारा के साथ लगल
8: सही कल भैया IAS में देखा। हाँ। भैया अपन किसान भाई बान है ना भैया, जे भी अपन होशियार किसान भाई बाट है, वो अपन लगल लपटियाल खेते में हमेशा रहा
7: एकदम भैया। और देखा ये समय पंच भाई लोग एकदम लगल है अपन नर्सरी डल्ले में, अथवा जो सीधी बुआई होले भैया। हाँ,
8: सही कल भैया,
7: जौन रोपाई नाई करे के पड़ाला यही समय बुआई कह दिया जाला। तो वो भैया सीधी बुआई वाला जो होला ना किसान के खेती वाला काम, ही बहुत सस्ता भी पड़ा
8: भैया। सही कल, बड़ा बड़ा बड़ा फायदा हो, बहुत लाभ है।
7: ये में पंच भाई लोग लगल हमें पूरा तन मन धन से।
8: ये देखो अब तो पहले रल है भाई कि अपन वो जोठाला हरल है कठावा, आप पीछे पीछे हरे के पीछे पीछे अपन बुआई हो जाता रहा है।
7: हाँ भैया, छिटुआ भी छिटकवा विधि से भी होता रहा है,
8: लाइन से लाइन भी हो गया, छिटकवा विधि से भी हो गया। लेकिन भैया ओमन होके का भैया हो, जब पानी बरसा तो के हैंग आवे के पड़े, तरी मेहनत लगाई थी की। लेकिन भैया देखा हो, यंत्रीकरण का युग हो गई, धीरे धीरे अपन परिवर्तन भइल। ए समय जो बाटे की देखो ये जो बालन है सीड ड्रिल जो बाटे, ये मशीन आ गई, उससे लाइन से लाइन और जितना मानक बीज बा वही हिसाब से, कहीं ढेर कहीं कम ना, बराबर से पूरा खेत के आराम से बुआई अपन हो।
7: लेकिन भैया के बुआई कैला के पहले चाहें कि खेत के खूब बढ़िया बना लिया जाए, मिट्टी बढ़िया बना लिया जाए, 2-3 सेंटीमीटर कम से कम गहरी जुताई हो जाए, होगा
8: जुताई रहे
7: जोने से माटी बढ़िया बनल है,
8: पाटा लगा
7: और भैया नमी भी
8: रहे।
7: ये नाते कि देखा कुछ पंच भाई लोग का करे ना, बहुत धूप रहाला गर्मी रह ले नमी ना आई बा तब वो हिम बोध तब भैया देखा वो जब बो दी है तब हमें से जब डीबी डड़ियाई भैया तो वो तो भैया जल जाए।
8: भैया सही कल यही नाते जी अपन जे भी होशियार किसान भैया भाई बाटा, वो पहले खेते के सिंचाई कर देता है।
7: हाँ।
8: सिंचाई कह के जब 2-4 दिन बाद भुर भुर हो जाता माटी, तब उसमें जोताई कह के वही पर अपन बुआई अपन।
7: हाँ भैया, तो वो जब डीबी नहीं कराता तो भैया वो
8: नमी के साथ रही खूब बढ़िया अपन
7: बढ़िया होता। लेकिन अब ऐसा है पंच भाई अगर बो दी है छीट दी है कि चला भाई ठीक बा छीट दिली, तब प्रकृति से पानी कम मिली कोनो पता नहीं बा
8: भैया, पता नहीं कब तबले तबले बची कि नहीं बची संभावना बाटे।
7: ये नाते से पंच भाई लोग उनके ऊपर जरूर ध्यान देवे की चाहिए, तो ये काफी सस्ता पड़ी। ये नाते की भैया रुपाई में देखा बड़ा पैसा लगा,
8: पानी चला
7: खेत पलेवा कराए ऊपर, फिर ओके का कहने लेवा का नहीं कराए ऊपर, तो ये से जो बा काफी दिक्कत
8: मजदूरन के। हाँ। मजदूरी देकर रोपाई कर
7: सब बची भैया।
8: हाँ, सब बचे
7: केवल खेते में ही बा। अच्छा कला है ना कि लाइन से लाइन में बुआई हो जाले तो उसे खरपतवार निकलने भी आसानी रहा,
8: आराम से हो जाए
7: निकल जाला, तो ये सब भैया एक फायदा पंच भाई लोग उठा सके ना, और जरूर ऐसे उनके लाभ मिले।
8: बहुत पंच भाई अपन ऐसा बुआई करके अपन उसे लाभ भी उठावा था ना।
7: भैया और देखा मन के चर्चा चलत रही, लेकिन हम चाहती पंच भाई लोग लगले हाथे को लोकगीत सुना।

0: भैया देखा, कमला प्रसाद कमल की आवाज में इतना बढ़िया अपन लोकगीत सुनलो भैया, आप अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए। और देखो भैया, पाली हाउस में अपन के तरह की सब्जी के उत्पादन कई जाला
1: हाँ
0: एक
1: भैया,
0: पर
1: देखा
0: डाक।
1: ये में एक एक फायदा ही बा पाली हाउस में भैया, कि पंच भाई लोग हर समय हर सीजन में जौन भैया सब्जी चाहे वो मिल सकाला।
0: सही कहा भैया।
1: यह नाते से कि वो हमें प्रकृति का असर बड़ा कम पड़ाला, और ओके पंच भाई लोग अपने हिसाब से जौन बा मौसम जैसन दिहल जाए
0: मौसम के
1: चाहे
0: हिसाब से अपन
1: वह
0: कई के
1: हिसाब से ओके
0: भी
1: मौसम दे के और
0: अनुकूल
1: सब्जी
0: बना
1: वहाँ
0: लेला के।
1: अनुकूल बना लेला।
0: तो भैया अपना पाली हाउस में सब्जियन के उत्पादन के तरकी कैल जाए पर डॉक्टर सतप्रकाश सिंह जी जानकारी देते ना अपने किसान भाई सुना और लाभ उठावा।
2: पॉली हाउस एक विशिष्ट आकार की संरचना है जिसके माध्यम से फसलों की मांग के अनुसार सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करते हुए मूल्यवान सब्जियों की खेती को प्राकृतिक प्रकोपों एवं अन्य समस्याओं से बचाव करती हैं और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन देती हैं। अर्थात वह खेती जो हर परिस्थितियों में उगाई गई फसलों को विविध आपदाओं से सुरक्षित रखती हो। पॉली हाउस की खेती अपनाने के कई तरह के लाभ हैं, जैसे तरह तरह के प्राकृतिक आपदाओं जैसे तापक्रम के उतार चढ़ाव, धूप छांव, ठंडी हवाओं, बारिश, ओला पाला, बर्फबारी, लू आदि कारकों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करती हैं। साल भर आवश्यकता अनुसार रोग रहित गुणवत्ता युक्त एवं सुरक्षित पौधों को कम समय में कई बार उगाया जा सकता है। कीटों पतंगों, जंगली जानवरों आदि से फसलों की रक्षा की जाती है। प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों को बढ़ावा देती है। मौसम, बेमौसम, अगेती एवं बाजार मांग के अनुसार सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। कमजोर अर्थात छोटे किसानों हेतु बहुत उपयोगी तकनीक है जिसके माध्यम से
1: हाँ भैया देखा, पाली हाउस में सब्जी का उत्पादन अगर अपन पंच भाई लोग करत हमें, तो पंच भाई लोग जौने तरह का सब्जी जौने सीजन में उगावल चाहेला वो सीजन में उगा सकेला। जैसे गर्मी का समय चलता, फिर भी अगर ठंडी के सीजन वाला सब्जी वो चाहे तो पाली हाउस में पैदा कर सकेला। इससे बहुत निमन फायदा होला, यह नाते से कि जौन बा ई सब्जी बाजारे में वह समय पहुँचाला जब वह सब्जी के नहीं पहुँचले का समय रहला, तो यह नाते से बहुत बढ़िया ओकर दाम भी मिलाला। अब जौने समय गोभी नहीं पैदा हुई, वह समय अगर गोभी बाजारे में पहुँची तो ओकर दाम बहुत अच्छा मिली। यह नाते से पंच भाई लोगन के जरूर जौन बा यह तरह के सब्जी के उत्पादन में रुचि लेवे के चाही, और यह पर सरकार भी सहयोग करेले, सहायता प्रदान करेले, और उनके इससे जाके अपने ब्लॉक पर अपने कृषि विभाग में जाके अगर संपर्क करें तो ये तरह के लाभ भी मिली कि जौन बा वो काम कई सकेलें, पाली हाउस के व्यवस्था बना सकेलें पंच भाई लोगन के, और उसे उनके लाभ भी मिल सकाला बढ़िया। तो ये कोशिश पंच भाई लोगन के जरूर करे के चाहिए भैया हो। और पाली हाउस के माध्यम से पंच भाई लोग अगर ये और भी कई तरह का सब्जी उगा सकेला, जिसे अगर देखल जाए तो लता वाली सब्जी बाटिन, लता वाली सब्जी के भी तैयार कर सकेला। तो इसे पंच भाई लोगों के बढ़िया निमन जानकारी मिली और उनके बढ़िया दाम भी मिली, बाजारे में समय से जब सब्जी पहुंची तो भैया ओकर बढ़िया निमन जैसन दाम मिले के चाहिए वो तरह के दाम भी मिली। कोशिश पंच भाई लोग अगर करें तो ला के जौन बा अपने खेते में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, कम जगह में भी बढ़िया जौन बा सब्जी का उत्पादन कर सकेलन, ले सकेलन। ये पर पंच भाई लोगन के विधिवत ध्यान देहले के ज़रूरत बा, और ये में सरकार अगर चाहे, सरकार से अगर चाहे तो बढ़िया फायदा भी मिल सकाला, वो में कोशिश करें पंच भाई लोग।
3: किसान भाइयों, पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन आप किस प्रकार से करें इसके बारे में थोड़ा तकनीकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देखते हैं, जो हमारे किसान भाई खुले खेत में सब्जियों की खेती करते हैं, उसकी अपेक्षा जो हमारे पॉली हाउस बने हुए हैं उसमें अगर आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ही सब्जियों की हम खेती उसमें करते हैं। जैसे आपकी टमाटर की खेती आप पॉली हाउस में अच्छी प्रकार कर सकते हैं, और खीरा और शिमला मिर्च, ये तीन प्रकार की तीन जो फसलें हैं, टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च, इनकी खेती आप अगर पॉली हाउस में करते हैं तो आप देखें बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी हम पॉली हाउस में खेती करते हैं उसमें देखें कि आपका जो पॉली हाउस बना हुआ है, ज़्यादातर हमारे जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत किसानों के यहाँ पॉली हाउस बनते हैं वो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस हैं, और उसमें आप देखें जो सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें प्रजातियों का जो चयन करते हैं खास करके उन प्रजातियों का चयन करें जो पॉली हाउस के लिए जो रिकमेंडेड प्रजातियां हैं। जैसे अगर हम टमाटर की बात करें, टमाटर की जो प्रजातियां हैं उसमें आपके NS 4266 बहुत अच्छी प्रजाति है, जो आपके असीमित बढ़ने वाली प्रजाति है उसका चयन करें, या आप देखें अविनाश 2 जो एक प्रजाति है उसको ले सकते हैं। इसी के साथ आप दूसरी प्रजाति एक नवीन है उसका चयन कर सकते हैं। यानी जो असीमित बढ़ने वाली टमाटर की प्रजाति हैं उन्हीं प्रजातियों का हम चयन पॉली हाउस में करते हैं। अब देखिए हम टमाटर की बात करते हैं या शिमला मिर्च की बात करते हैं या खीरा की बात करते हैं, इन सबका पॉली हाउस में करने से और हमारा खुले में करने से क्या लाभ है? तो पॉली हाउस का देख लाभ बताएं आपको कि जो खुले में आप जो उत्पादन करते हैं सब्जियों का उससे करीब 5 से 10 गुना सब्जियों का उत्पादन आपका पॉली हाउस में ज्यादा होता है। और दूसरा जो हमारी प्रतिकूल वातावरण होता है, जैसे आप देख रहे हैं बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपके पॉली हाउस में इस तरह की व्यवस्था होती है कि जैसे ठंडी में भी आप उसमें जहां टेम्परेचर आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस चला गया है और कम है तो उसमें भी आप पॉली हाउस में आप उसकी खेती कर सकते हैं सब्जियों की। वहां पर आप देखेंगे कि अगर आपकी गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो पॉली हाउस में देखते हैं फॉगर्स लगे रहते हैं, तो उसमें अगर फॉगर्स चलाते हैं तो कम से कम आप सडनली आप देखेंगे एकदम अचानक 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बाहर के वातावरण से टेम्परेचर गिर जाता है। तो यानी प्रतिकूल वातावरण में हम सब्जियों की खेती हाउस में बड़े आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा बेमौसमी सब्जियां, जैसे आप देखते हैं जो खुले में नहीं कर पाते हैं वो हम उसमें पॉली हाउस में कर सकते हैं। इसी को हम देखें कि जब हमारे खुले में जो कीड़े और बीमारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है आजकल सब्जियों में, बहुत से किसान बहुत से रसायनों का प्रयोग करते हैं और वो हमारे सब्जियां जब बाजार में हम लेकर खाते हैं तो देखते हैं तरह तरह की बीमारियां आजकल जो फैल रही है, जो हमारे रसायन जो सब्जियों में पड़ रहे हैं पेस्टिसाइड, उसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप पॉली हाउस में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसमें बहुत कम मात्रा में आप देखें कीटनाशी और फफूंदनाशियों का प्रयोग होता है। तो ये बहुत सारे फायदे आपके पॉली हाउस में सब्जियों के उत्पादन है से है। अब दूसरा जो हम कह रहे थे जो फसलों की कौन कौन सी फसलें हैं, तो टमाटर की आपको जैसे अभी आपने प्रजातियां बताई, ध्यान ये रखना है जैसे प्रजातियों का आपने चयन कर लिया, जैसे आपने टमाटर की आपको बताई अविनाश 2 है या आपकी नवीन है या NS 4266 है, ये प्रजाति मान लीजिए आपने लिया तो इसकी नर्सरी आप पहले उसको डालने की जरूरत होती है। तो नर्सरी आप कोशिश करें, क्योंकि आपकी ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है जिसको संरचित खेती कहते हैं जो पॉली हाउस में की जाती है, तो नर्सरी आप बेड पे न डालें, उसको भी कोकोपिट में आप तैयार करके जो ट्रे आती हैं प्लास्टिक की जिसको आप देखते होंगे 98 जो उसमें छेद रहते हैं उसमें जो भरा जाता है कोकोपिट में, उसमें आप वर्मिकुलाइट, परकोलाइट और इसको भर करके और उसके बाद में आप देखें कोकोपिट, ये तीन रहते हैं कोकोपिट, वर्मिकुलाइट और परकोलाइट, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके पूरा मिश्रण अच्छे से तैयार कर लें। खास करके आप देखें जो आपके ये जो कोकोपिट होती है इसको आपको एक रात पहले भिगाना होता है, और उसके बाद भिगाने के बाद में उसका जब पानी निचोड़ करके सुबह जब निकालेंगे थोड़ा सा उसका फैला लें, फैला करके जब पानी उसका निचोड़ जाए उसके बाद में उसमें वर्मिकुलाइट और परकोलाइट डाल करके बराबर मात्रा में और उसको मिला करके मिक्सचर तैयार करते हैं, तो वो ट्रे जो होती है आपके उस ट्रे में भर करके और एक एक बीज आप उसमें टमाटर का डाल करके और नर्सरी तैयार करते हैं, लगभग आपका 20-22 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद जहां पॉली हाउस में देखें आप बेड बनाई जाती हैं, तो बेड जब बनाते हैं चाहे आप खीरा की बनाते लिए, चाहे टमाटर के लिए, चाहे आप उसमें मिर्चा शिमला मिर्च लगाते हैं, तो उसके लिए 1 मीटर चौड़ी बेड बनाएंगे और 15 सेंटीमीटर उठी हुई और जितना आपका लंबा पॉली हाउस है उसी अनुसार उसको बना लें, और दूसरी जो बेड बनाएंगे यानी एक बेड से दूसरी बेड जो बनेगी उसकी जो बीच का जो दूरी रखेंगे वो लगभग आपकी 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर की दूरी रखते हुए दूसरी बेड बनाएंगे। तो इस तरीके से आप उसको बेड बना करके उसको तैयार कर लेंगे, और उसके बाद जो आपकी मिट्टी जो आपकी रहेगी उसको देखिए शोधित करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए 4% फॉर्मेल्डिहाइड जो रहता है दवा रहती है उस फॉर्मेल्डिहाइड का 4% का घोल बना करके और उस पूरी बेड पर छिड़काव किया जाता है। और छिड़काव आप इस तरह से करें जैसे एक वर्ग मीटर एरिया में लगभग आपका 4 लीटर पानी लगना चाहिए, यानी मिट्टी आपकी इतनी अंदर तक थोड़ा गीली हो जाएगी तो आप देखेंगे पूरी मिट्टी आपकी शोधित हो जाएगी। और जब आपने इसका फॉर्मेल्डिहाइड का इसका छिड़काव कर देते हैं तो उसके बाद पॉलीथीन लेते हैं और पॉलीथीन से पूरी बेड को जो आपने बनाई है 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची, उसको पॉलीथीन से पूरा उसको कवर कर दीजिए, ढक दीजिए और किनारे से मिट्टी लगा करके जैसे मल्चिंग करते हैं उस तरह से मल्चिंग करके उसको बंद कर दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो उसमें देखिए क्या होगा, ये पूरा सभी बेडों को ढकने के बाद में जो आपका पॉली हाउस है उसके जो भी बाहर की जो आपके पर्दे होते हैं उनको भी नीचे गिरा दीजिए और गेट भी कम से कम 4 दिन तक उसके पॉली हाउस को बंद रखिए। तो इसमें देखेंगे गैस बनेगी और उसके अंदर भी जो भी फफूंद कीड़े सब हैं वो पूरा मिट्टी आपकी स्टरलाइज हो जाएगी, पूरा शोधित हो जाएगी, उसके बाद कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। 4 दिन के बाद उस पॉली हाउस को आप खोलेंगे, जो आपने पॉलीथीन बिछाई हुई थी बेडों पे उसको आप उठा लेंगे और उसके बाद उसके

आपने बेड बनाई है उसमें आप कोशिश करें कि जो पौधे से पौधे की दूरी है लगभग 2 फीट के आसपास आप उसको रखें और उसके बाद उसकी रोपाई करते जाएं। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जैसे आपने टमाटर लगाते हैं तो टमाटर बढ़ते ही उसमें शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें जो शाखाएं इधर उधर की निकलती हैं उसको शाखाओं को आप प्रूनिंग करते रहें यानी उनको काटते रहें, और ऊपर से जो आपका नेट का जो जाली रहती है तार बना रहता है उससे आप धागा बांध करके या प्लास्टिक की डोरी आती है उससे आप उस पौधे के पास में क्लिप लगा करके और पौधा जैसे बढ़ता जाता है और वो उस पे लपेट करके उसको सहारा देते जाते हैं, साइड की ब्रांचें हम उसमें काटते जाते हैं, जब ऊपर तक चढ़ जाता है उसके बाद उस ब्रांच को काटना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे टमाटर से आपको बहुत अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। कभी आपको कहीं दिक्कत आती है कि इसमें इतनी व्यवस्था करने के बाद भी पॉली हाउस में हमारे टमाटर में ज्यादातर देखते हैं कि वो पत्तियां सिकुड़ने वाली समस्या आ जाती है कभी कभी, तो उस समय ऐसे जो लीफ कर्ल जो बीमारी होती है, वैसे पॉली हाउस में बहुत कम चांस है लेकिन कहीं भी अगर इस तरह की समस्या आती है तो तुरंत उसमें कोई सिस्टेमिक इंसेक्टीसाइड ले लें जिसमें इमिडाक्लोरोपिड अगर आप लेते हैं तो उसकी 0.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल बना करके और उसकी तुरंत उसका छिड़काव कर दें। दूसरा एक काम करें, अगर कहीं किसी पौधे में अगर ये समस्या दिखती है लीफ कर्ल वायरस की तो उस पौधे को निकाल करके दूसरा पौधा आप उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये टमाटर में आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा, इसमें कोई और ज्यादा कीड़े बीमारियां पॉली हाउस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। अगर आप इसके खीरा की बात करें तो खीरा के लिए जो हमारी बेड जो आपने बनाई है यही काम देगी। जब मान लीजिए टमाटर की फसल आपकी खत्म होती है और उसके बाद खीरा लगाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप तैयारी खीरा के लिए करेंगे। वही बेड बनाएंगे 1 मीटर चौड़ी और दूसरी बेड की दूरी 50 सेंटीमीटर का अंतर रखते हुए दूसरी बेड बनाएंगे। उसी तरह से आप फॉर्मेलडिहाइड से शोधन करेंगे जिस प्रकार से आपने टमाटर का शोधन किया हुआ है। खीरा की जो अच्छी प्रजातियां होती हैं इसमें पार्थेनोकार्पिक प्रजातियां होती हैं खीरा की, वही लगाई जाती हैं। जो आप खुले में खीरा लगाते हैं वो प्रजातियां पॉली हाउस में नहीं लगती हैं, क्योंकि देखते होंगे जितने भी हमारी लता वाली सब्जियां हैं उसमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर आते हैं, लेकिन जो पार्थेनोकार्पिक जो प्रजातियां रहती हैं उसमें ज्यादातर मादा फूल रहते हैं यानी उसमें पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं होती। और उसमें हमारी जो प्रजातियां हैं पॉली हाउस में लगाने वाली उसमें एक वैली प्रजाति है बहुत अच्छी है, एक इन्फिनिटी प्रजाति है उसका प्रयोग हम करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। आप देखते होंगे जो खुले में खीरा लगता है उसमें ज्यादातर चौथे नोड पे खीरा लगता है, जो उसकी नोड रहती है जहां पत्ती निकलती है और जो नोड बनती है उसमें चौथी नोड पे दूसरा खीरा लगता है। लेकिन जो पार्थेनोकार्पिक जो प्रजाति आपको बताई इन्फिनिटी या वैली, इनको अगर आप लगाते हैं तो देखेंगे हर नोड पे खीरा बनता है और इसमें उत्पादन आपका देखेंगे काफी बड़ा मात्रा में खीरा निकलता है। तो इस तरह से भी, लेकिन इसमें ध्यान ये भी रखना है खीरा भी आप उस तरह से जैसे टमाटर को सहारा दिए थे उसी तरह से आप खीरे को भी सहारा देंगे और पौधे को लपेटते जाएंगे, और ज्यादा अगर ब्रांचें निकलती हैं तो उसको आप प्रूनिंग करते रहेंगे और काटते रहेंगे। तो इस प्रकार से खीरा से बहुत अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर आप शिमला मिर्च की बात करें तो किसान भाइयों देखें, जहां तक मिट्टी की तैयारी की बात है तो जिस प्रकार से टमाटर के लिए आपको विधिवत बताया उसी प्रकार से खीरा, उसी प्रकार से शिमला मिर्च की बेड बना करके आप उसमें वही तैयारी आपको करनी है, मिट्टी का शोधन उसी प्रकार से करना है। प्रजातियों की खास करके विशेष ध्यान देना है। अगर हम शिमला मिर्च की बात करते हैं तो शिमला मिर्च के लिए हमारी जो प्रजातियां हैं उसमें आप देखेंगे कि जो हमारी इंदिरा है, भारत है, ये प्रजातियां आप उसमें ले सकते हैं। आजकल देखिए बहुत अच्छी हमारी जो रंगीन प्रजातियां हैं, जैसे लाल कलर की अगर शिमला मिर्च लेते हैं तो बॉम्बे एक प्रजाति है वो बहुत प्रचलन में है, उस प्रजाति को ले सकते हैं। कुछ किसान भाई देखे होंगे पीले कलर की, आजकल जो हमारे मॉल्स हैं उसमें कलर्ड प्रजातियों का बहुत ज्यादा, कलर शिमला मिर्च का ज्यादा चलन चलता है, तो जो पीले कलर की है वो ओरोबेली एक प्रजाति आती है, उस प्रजाति का आप लेकर के और उसका नर्सरी तैयार करके और उसमें पौधे का रोपण कर सकते हैं। नर्सरी ध्यान रखें, चाहे आप टमाटर की नर्सरी, चाहे आप खीरा है या शिमला मिर्च है, सभी प्रजातियों को लेकर के जो नर्सरी तैयार करेंगे आप उसको कोकोपीट, बर्मीकुलाइट और परकोलाइट
तीनों को मिलाकर और ट्रे में ही नर्सरी डालेंगे, आपको खुली बेड में नर्सरी डाल करके उसमें आपको रोपाई नहीं करनी है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें पता चला कि बाहर से आपने नर्सरी लिया है, उसमें कोई भी रोग है, बहुत सारे कीड़ों का इन्फेक्शन होता है, वो अगर आपका पॉली हाउस में रोपण होता है तो उससे आप देखेंगे कि आपके पौधों में उस तरह की समस्या आ जाती है। तो ध्यान रखें, उसको शोधित किया हुआ ही आप उसमें नर्सरी को ले जाएं। ध्यान और

0: भी देना है किसान भाइयों, जब आपका पौधा रोपण करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे उसमें ड्रिप के माध्यम से पानी जाता है, तो ड्रिप में घुलनशील उर्वरक है जिसमें आपका 19-19-19 है, जो घुलनशील उर्वरक है उसको आप लेंगे और उसमें आपकी पानी में घोल करके उसकी मात्रा होती है कि 13.7 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में, अगर वो एक उसमें पानी का जब घोल बनाते हैं तो उसमें देखें प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमको उसमें जो 19-19-19 जो हमारा घुलनशील उर्वरक है उसको डाल करके उसमें डालते हैं तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है।
1: हाँ भैया, देखा पाली हाउस में सब्जी के उत्पादन के तरह कई जगह पर डॉक्टर सतप्रकाश सिंह जी इतना बढ़िया जानकारी दिल हैं। डॉक्टर साहब के दिल जान धन्यवाद। और यही के साथ अपने कार्यक्रम का समय पूरा होता, चले के पंचों जय जवान जय किसान।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आइए सुनते हैं मोहम्मद खलील एवं साथियों के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आप सुन रहे हैं मोहम्मद खलील व साथियों को।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद खलील व साथियों के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत। और इसी के साथ हमारा लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश समार में आइए सुनते हैं डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय से उनकी भोजपुरी कहानी महतारी का कहल।
1: अब हमरा जिंदगी भर सोचही के न बा, जब अपना गोड़ में हम अपने कुल्हाड़ी मरले बानी तो ऐसे कहें कहा तनी रुआ। हाँ जी, हम अपन बुद्धि के ताखा में रख के जौन माई कहे तौने करत रही हाँ। जब माइयो नहीं खे तो कार करी बुझाते नहीं खे। जितना कहत निशा के आंख लोर से डबडबा गई। निशा के स्कूल के प्रिंसिपल रजनी निशा के लोर पूछत कहली, अरे हम तो रहुआ के अनी है चाय पिए आ जनपदीय रैली पर कुछ चर्चा करे, बाकी रहुआ तो माहौल के गमगीन बना देनी हम। अच्छा ठीक बा रुआ, बैठी हम चाय बना के ले आओ तनी। इतना कहत निशा किचन में जाके चाय बनावत खा मोनू के बारे में सोचे लगली। निशा और मोनू के जब ब्याह भइल तो निशा बेसिक प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गई रहली, बाकी एमए बीएड कह के मोनू बेरोजगारन के लाइन में खड़ा रहलन। ई ब्याह निशा के महतारी के पसंद से भइल, जबकि निशा और मोनू दोनों जना यह ब्याह खातिर तैयार ना रहलो। बाकी निशा के महतारी मोनू के घरे जाके मोनू के समझौली कि सुनी मोनू जी, परिवार में एक ही आदमी नौकरी करेला तो गृहस्थी के गाड़ी ठीक से चलेला, आ दोनों आदमी नौकरी करेला तो गृहस्थी के सुख शांति बिला जाला। आ इन्हें निशा के महतारी निशा के समझौली कि देख मोनू बेरोजगार बन, तू तोरे तनख्वाह पर निर्भर रही, ते जे तरह चाहबी ओ तरह अपना अंगुरी पुंगा के नचावत रहबी, वो एने उन्हें भाग ना पई है। आखिर में निशा और मोनू दोनों जना तैयार हो गई। लो निशा के बाप बहुत पहले ही दुनिया से विदा हो चुकल रहलन। एने मोनू के बाबू डखाना ILIC के एजेंटी कह के अपन परिवार चलावत रहलन। आज उहो नहीं खन मोनू डर ट्यूशन कह के आपन आय अपना माई का खर्चा चलावत बन। ये कुल सोचत निशा दू कप चाय लेके अली, एक कप चाय अपना प्रिंसिपल को बढ़ावत कहली चाय पीही आ जनपदीय रैली पर चर्चा का करे के बा, अरे जौन राउर हुकुम होई ओकर पालन होई। चाय पी के जात खा रजनी कहली कि बीतल जिंदगी के सोचला के काम नहीं खे, अब आगे खातिर कोनो ठोस कदम उठाई। ई कह के रजनी अपना घरे चल गेली। निशा सोचे लगली कि ठोस कदम तो ऊ उठावेला जेकरा पहले गोड़ होखे। हमार माई तो हमार हाथ गोड़ दोनों काट के मर गई, अब हम का करें। मोनुओं के कहीं अता पता नहीं थे कि जाके उनसे माफी मांग के फिर से संगे रहे लगती जा। ये कुल सोच के निशा खाना उना ना बनौली, बेखैले सुत गयी। उनकर माई के मुले साल भरले हो गई बा। निशा अपन बीतल जिंदगी सोच सोच के परेशान रहत बाड़ी। निशा मोनू के ब्याह मई के महीना में भइल आ जुलाई में स्कूल खुलते निशा अपने महतारी की है चल गयी, काहे की वही उनकर नौकरी रहे। निशा के महतारी एक दिन अपने दामाद मोनू के चिट्ठी भेजली कि जमाई जी रुआ के मालूम कि निशा नौकरी छोड़ के रुआ संगे गांव में रह ना पई है, ऐसे रुआ अपने घर में ताला बंद करके अपने महतारी संगे एजे आ जाई और सब के उस संगे ही रही तो बहुत अच्छा लगी निमन लगी। मोनू बेचारू घर में ताला लगा के गांव के लोगन के सचेत कह के अपने महतारी संगे निशा के है आ गिलन। बाकी रेजा अला पर घर के झाड़ू पोछा खाना नाश्ता चौका बर्तन हाट बाजार फूल मोनू और मोनू के माई के जिम्मे आ गई। निशा और निशा के महतारी मालकिन बन गई लो। निशा कुछ काम कैलो चाहिए तो उनकर महतारी उनका के रोक दी है आ कही है कि सुन, जब मर्द नौकरी करेला तो मेहरारू ने कुल काम करे लिन सर, आ जब मेहरारू नौकरी करी तो मर्दे ने कुल काम करी। ये बात सुन के मोनू के मन में बहुत तकलीफ होके बाकी कुछ बोल ना पावत रहलन। एक दिन मोनू तरकारी कीन के ले अलन। निशा अपना माई के कहला पर कहली अजी काल तरुआ आधा किलो आलू ले आई रहनी तुम्हें 15 गो आलू रहे, बाकी राज कहा 12 गो बा। मोनू कहन अरे भाई आलू के साइज छोट बड़ भइला से गिनती कबो कम कबो अधिका हो जाला। तब निशा के माई कहतारिन बाकी पुलिस के हंटर लगते गिनती बरोबर हो जाला। ई बात सुनते मोनू अपना माई के लेके तुरंत अपना गाँव को चल जलन। निशा रोकल चाहली बाकी निशा के माई निशा के रोकत कहलिन बन बन के गिदड़ जाई कहाँ, छिन बनवे में आई जाए दे, जब भूख से पेट जरी तो इहमें आई हैं और ये कहीं थे बा का इनकर। बाकी मोनू पलट के निशा को ना देखलन, अपने गाँव में आके फिर से अपन टॉर ट्यूशन शुरू कर दिलन। एक दो महीना इंतजार कैला के बाद निशा अपने माई से कहलिन, ए माई बुझा था कि मोनू अब यहाँ ना आई है, कहती तो हम ही एक दिन जाती आ उनका के समझा बुझा के लिया आईती। मगर माई कहलिन, तोरा गैला के काम नहीं खे, चल कचहरी में चल के मोनू पर दूगो मुकदमा कर दे, एगो तलाक के आ एगो स्त्री धन वापसी के। मुकदमा लड़े के बेमत नहीं खे मोनू के, मुकदमा में हर तारीख पर खर्चा होला, वो कहाँ से कपई है, हार दाँव के आई है, तोरा गोड़ पर गिरी है आ फिर नौकर नियर रही है। निशा अपने महतारी के कहला में आके तलाक आ स्त्री धन वापसी के मुकदमा दाखिल कर दिली। मुकदमा के नोटिस पर नोटिस मोनू के जाए लागल। मोनू बेचारू नोटिसन के ले लेके कोनो ताखा ओखा पर धदत रहलन, बाकी कोनो मुकदमा में कब्बो हाजिर ना भइल, काहे कि जानत रहलन कि मुकदमा के खर्चा उ संहार ना पई है। यहाँ तो माई बेटा के नमके रोटी जुटावल कठिन रहे। ए तरह मुकदमा एक तरफा चले लागल। एक दिन तलाक मंजूर हो गए, कुछ दिन में स्त्री धन वापसी में भी निशा के डिग्री हो गई। ओकरे वसूली खातिर मोनू के पैतृक मकान कुर्क हो गई। निशा के महतारी के पूरा विश्वास रहे, अब मोनू के जब घर नीलाम होके लागी ओकर नीलामी के नौबत आई तो आके सरेंडर कर दी है आ नीलामी ना होके दी है। बाकी मोनू रहले स्वाभिमानी, नीलाम भैला के एक दिन पहले ही अपन मकान अपन गाँव कुल छोड़ के अपना माई के लेके कोनो दूसरा शहर में जाके रह लगलन। मकान नीलाम हो गई, निशा के पैसा मिल गई, बाकी निशा के आंख डबडबा गई। बाकी निशा के महतारी निशा के झकझोरत कहली कि रोत कबाड़ी, तोर दोसर ब्याह कह देवे ही पैसा से, मोनू के कुकुर कटले रह कि गांव घर छोड़ के भाग गई हन। निशा कहली कि हब हम दोसर ब्याह ना करब रे माई, जब एगो से सुख ना मिलल तो दोसर तीसर से सुख ना मिली। दोसर ब्याह के बात लेके निशा के महतारी में रोज कचकच होके लागल। एक दिन निशा के महतारी के हार्ट फेल हो गई और दुनिया छोड़ के चल गईलिन। अब आज निशा एकदम अकेले और उदास रहे लगलिन। उनके प्रिंसिपल रजनी उनका के बहलावे खातिर हमेशा कोशिश करी है, जनपदीय रैली खातिर उनका के एगो नाटक तैयार करावे के कहलिन। निशा अपने बीतल जिंदगी पर नाटक तैयार करौलिन आ जनपद रैली में प्रस्तुत करौलिन, जौना के शीर्षक रहे महतारी के कहल। वो नाटक पर उनका के प्रथम पुरस्कार मिलल, ऐसे रजनी और निशा दोनों आदमी बहुत खुश भइल लोग। अब निशा के रजनी सुझाव दिली कि कोनो अनाथालय से एगो लड़का गोद ले ले, ओकरा से तोर अकेलापन और उदासी दोनों खत्म हो जाई। रजनी या निशा कई गो शहर में जा जाके अनाथालय में सुंदर और तेज तरार लड़का खोजे लागल लोग। एक दिन एगो शहर में बहुत बड़ अनाथालय रहे, ओमे इन्हों लोगन के एगो बहुत सुंदर और तेज तरार लड़का लौकल। ओके गोद लेवे खातिर कर्मचारियन से कहल लोग, कर्मचारी लोग प्रबंधक कक्ष की ओर इशारा कर दिया। रजनी या निशा चल के प्रबंधक कक्ष में पहुंचल लोग तो प्रबंधक के कुर्सी पर मोनू के बैठल देख के अवाक रह गई लोग। निशा के गला रुध गई, आँख से झरझर लोर गिरे लागल। ई देखते मोनुओं के आँख से लोर गिरे लागल। अब निशा तुरंत मोनू के मुड़ गोड़ पर अपन मुड़ी रख दियली और रोवत कहली, हमके माफ कर दी, हमके माफ कर दी, हम अपना महतारी के कहल मान के अपन जिंदगी खुदे बर्बाद कैले बानी। मोनू तुरंत निशा के ऊपर उठौलन अपना और वायु और बैठा लेलन।
0: भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश अमार में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय से उनकी भोजपुरी कहानी महतारी का कहल। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में आइए सुनते हैं पंजाबी लोकगीत। कलाकार हैं अजीत कौर।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में अभी आप सुन रहे थे पंजाबी लोकगीत। कलाकार थे अजीत कौर और केएल अग्निहोत्री। और इसी के साथ हमारा प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 7:31 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे फिल्म राज के कुछ गीत। प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें आप सुनेंगे शाम 7:55 पर।

रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर सत्यपाल सिंह से उनकी हिंदी वार्ता। विषय होगा डॉलर का वर्चस्व और भारतीय अर्थव्यवस्था। रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार होंगे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर।

अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
7: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
9: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
8: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
9: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
8: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
9: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
8: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
9: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
8: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
6: कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
8: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
10: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जैसे कि नदी पूरा साफ हो, क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
8: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
11: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्याऊ और धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
8: वाराणसी में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
12: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
13: इतनी भी क्या जल्दी थी?
12: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
13: और ये
14: मेरी गुड़िया के नाम।
15: पर दादी,
12: हाँ,
15: आपके नाम?
16: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
12: शुभ शुभ बोलो।
15: क्या?
16: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
17: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे फिल्म संगीत इस अंतराल के बाद।
7: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
18: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
7: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
18: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
7: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
18: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
19: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
18: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
7: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
18: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
7: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
18: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
20: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
21: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
22: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
21: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
22: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
21: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और

0: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
1: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
0: For details, log on to www.ddindia.com।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त राजेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर फिल्म राज के कुछ यादगार फिल्मी नगमे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का।

श्रोताओं, फिल्मराज में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण को। समीर के गीत को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने दर्शकों के मन में रहस्य, रोमांच और भय का अद्भुत संसार रचा। वर्ष 2002 में प्रदर्शित फिल्म राज ऐसी ही एक सफल और चर्चित फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया था, जबकि प्रमुख भूमिकाओं में बिपाशा बसु और डिनो मोरिया प्रमुख रहे।

श्रोताओं, फिल्म राज की अपार सफलता में इसके मधुर और भावपूर्ण संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार युगल, नदीम सैफी और श्रवण राठौड़, जिन्हें सामूहिक रूप से नदीम श्रवण के नाम से जाना जाता है, ने तैयार किया था।

और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्मी गीतों का यह सुहाना सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। आप अपने दोस्त राजेश पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें। प्रायोजक हैं KIPM गीडा गोरखपुर।
1: पूर्वांचल का पहला MBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 8000-990-2937।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो के खास कार्यक्रम कैंपस की बातें में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है। तमाम इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी अपने करियर को लेकर योजनाएं बना रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई मैनेजमेंट करना चाहता है, तो कोई फार्मेसी को चुनना चाहता है। आइए आज इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के करियर ओरिएंटेशन के बारे में हम बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमान KIPM टेक्निकल कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार सिंह से। विनोद जी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: विनोद जी, अगर 12वीं पास कोई विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहे तो आपके KIPM कॉलेज में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसमें वो आसानी से एडमिशन ले सके?
3: KIPM कॉलेज निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी कोर्सेज BTech विभिन्न ब्रांचों में कराया जाता है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग की पढ़ाई होती है। और MTech कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की विधा में पढ़ाई कराई जाती है। पॉलिटेक्निक MBA, MCA, BBA, BCA कोर्स का भी संचालन होता है, साथ में D-Pharm, B-Pharm, M-Pharm और डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी का भी कोर्स कराया जाता है।
2: आपके KIPM कॉलेज को MBA की मान्यता मिल जाने के बाद इससे छात्र छात्राओं को क्या लाभ मिलेगा?
3: अब इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह है, अब जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां थी, पहले उनके अंदर हेजिटेशन हुआ करता थे, कॉलेज में उत्तम कोड की गुणवत्ता नहीं होगी, उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो कॉलेजों में आने से बचते थे। लेकिन अब उनको पूर्ण भरोसा हो गया है कि MBA एक्रेडिटेड होने के कारण KIPM में आना चाहती हैं और कंपनियां आ रही हैं और हमारे बच्चों के लिए प्लेसमेंट की अच्छी सुविधा हो रही है और बच्चे अच्छी अच्छी कंपनियों में जा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, उनको प्लेसमेंट का अच्छा अवसर मिल रहा है। MBA मान्यता के साथ छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए भी अधिक अवसर मिलते हैं, जैसे कि मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए।
2: विनोद जी, तकनीकी कोर्सेज में एडमिशन लेना ही है तो मेट्रो सिटीज के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को छोड़कर तमाम विद्यार्थी गीडा गोरखपुर का KIPM कॉलेज ही क्यों चुने?
3: KIPM कॉलेज में विश्व स्तरीय लैब की सुविधा उपलब्ध है, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज है, उत्कृष्ट प्लेसमेंट KIPM को किसी भी मेट्रो सिटी के कॉलेजों की तुलना में बेहतर बनाता है, साथ ही टेक्निकल कोर्स की अच्छी पढ़ाई बच्चे यहां पूर्ण कर सकते हैं। उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के लिए निकटवर्ती जनपदों के मेधावी छात्र छात्राओं को अपना करियर बनाने के लिए KIPM सर्वोत्तम संस्थान है, जहां पर प्रत्येक वर्ष 20 गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान कराया जाता है। KIPM में इनोवेशन सेल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल में छात्र छात्राएं तकनीकी दक्षता को प्राप्त करते हुए रियल लाइफ प्रोजेक्ट का अनुभव करते हैं। जो विद्यार्थी स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको KIPM संस्थान प्रोत्साहित भी करता है। गीडा में स्थित होने के कारण संस्थान के छात्रों को समय समय पर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्शन कराने का अवसर भी प्राप्त होता रहता है। KIPM उत्कृष्ट शिक्षा और आकर्षक प्लेसमेंट के लिए भी जाना जाता है। KIPM संस्थान में अभी तक 300 कंपनियां विजिट कर चुकी हैं, 3000 से अधिक बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, इसलिए संस्थान को 18 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
2: और अब तो आपके KIPM कैंपस में इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर की भी स्थापना हो चुकी है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
3: KIPM कॉलेज में KIPM इनोवेटर फाउंडेशन के तहत इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर खुल जाने के बाद नए नए इनोवेशन, स्टार्टअप, छात्रों के विचार, उनकी रचनात्मक क्षमता और टैलेंट दिखाने का एक बेहतर मंच प्रदान करता है, जिसमें केवल KIPM कॉलेज के ही छात्र नहीं बल्कि समूचे देश के किसी भी कोने से छात्र आ करके अपना इनोवेशन आइडियाज को मूर्त रूप दे रहे हैं। KIF का मुख्य उद्देश्य छात्रों की टेक्निकल, इंटरप्रेन्योरियल और प्रैक्टिकल स्किल को विकसित करना है। यह केवल क्लासरूम लर्निंग तक सीमित नहीं रहता बल्कि स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड इनोवेशन इंडस्ट्री एक्सपोजर भी देता है।
2: ये बहुत अच्छी बात है विनोद जी। और अब आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अगर आप भी तकनीकी शिक्षा से जुड़कर अपना भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो गीडा गोरखपुर स्थित KIPM टेक्निकल कैंपस आपके लिए एक बेहतर चुनाव हो सकता है। धन्यवाद।
4: देश भर के कॉलेजों में KIPM का 13वां स्थान, 3000 से अधिक प्लेसमेंट देकर बढ़ाई पूर्वांचल की शान। एडमिशन ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D-Pharm, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA।
1: पूर्वांचल का पहला MBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें। प्रायोजक थे KIPM गीडा गोरखपुर। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह से उनकी हिंदी वार्ता। विषय है डॉलर का वर्चस्व और भारतीय अर्थव्यवस्था।
5: नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच जो उतार चढ़ाव चल रहा है, यह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को रेखांकित कर रहा है। अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था के मुद्रा में आने वाले उतार चढ़ाव की बात करें तो जो मुद्रा का मूल्य होता है आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक होता है। यदि विश्व बाजार में किसी भी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की कीमत बढ़ रही है तो वह अर्थव्यवस्था की समृद्धि का सूचक माना जाता है। उसी के तारतम्य में भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर के मध्य जो विनिमय दर आजकल विशेष चर्चा के केंद्र बिंदु में है और इस विनिमय दर के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपये की कीमत जो है गिर रही है और अमेरिकी डॉलर की कीमत जो है हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसी के संदर्भ में आज हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो प्राचीन काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी बड़ी ही समृद्ध थी। देश में उत्पादित वस्तुएं जो हमारे कुटीर उद्योगों के माध्यम से, हमारे लघु उद्योगों के माध्यम से, भारतीय उद्यमियों के माध्यम से उत्पादित होती थी, उन वस्तुओं को विश्व बाजार में हमारे व्यापारी बेचते थे और विश्व बाजार से सोने और चांदी निर्मित मुद्राओं को देश में ले आया करते थे। और इस प्रकार से प्राचीन काल में भारत जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया। लेकिन प्राचीन काल की वही जो संपन्नता थी उसी संपन्नता को देख करके भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हुए और उसी विदेशी आक्रमण के क्रम में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। उस कालखंड में लघु और कुटीर उद्योग जो थे वो भी नष्ट हो और धीरे धीरे भारतीय बाजार में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का व्यापार होने लगा। और उस समय की स्थिति अगर बताएं तो प्राचीन काल की जो संपन्नता थी वो संपन्नता धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते अब वह जो है समाप्त हो गई और हम पूरी तरह से ब्रिटिश काल में आकर के अंग्रेजों के गुलाम होते हैं और हमारे उद्योग और व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं और भारत जो है विदेशी वस्तुओं पर धीरे धीरे निर्भर होता चला जाता है। और जब कोई भी अर्थव्यवस्था जो है विदेशी वस्तुओं पर निर्भर होती है, यानी अब वहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े हमको देखने पड़ते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर हम देखें ब्रिटिश काल जब था तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इंपोर्ट ज्यादा करती थी, एक्सपोर्ट बहुत ही कम करती थी, हम कच्चे माल का एक्सपोर्ट करते थे। और उसी के क्रम में आजादी के समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था की जो करेंसी थी, जो रुपया था, वह जो है ब्रिटेन के रुपए के साथ भारतीय रुपया जो है क्लब था। तो भारतीय रुपए का विश्व बाजार में जो कीमत थी अगर अमेरिकी डॉलर से हम कंपेयर करें तो आजादी के समय अमेरिकी डॉलर के साथ भारत का एक्सचेंज रेट था $1.3030 का। यही एक्सचेंज रेट था भारत के आजादी के बाद। लेकिन आज जो विशेष रूप से हमको वार्ता करना है कि अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष जो है भारतीय रुपया क्रमशः उसकी कीमत जो है डॉलर के सापेक्ष में गिरती हुई पाई जा रही। तो इसको अगर देखा जाए तो भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज को देखें तो यह अचानक से घटने वाली घटना नहीं है। आजादी के बाद हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी और विदेशी मुद्रा आएगी कैसे, तो उस समय के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने अपने वस्तुओं को विश्व बाजार में निर्यात करने के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू। 18 सितंबर 1949 को देश के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया भारतीय रुपए का पहला अवमूल्यन किया जाता है और वह एक्सचेंज रेट जो था $1 = 4.76 भारतीय रुपए के साथ होता है। फिर आगे चल करके 6 जून 1966 को भारतीय रुपए का पुनः अवमूल्यन किया जाता है और उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने भारतीय मुद्रा का दूसरे बार डिवैल्यूएशन किया और जो है यह $1 = 7.50 यानी ₹7.50 का एक्सचेंज रेट जो है वहां पर डिवैल्यूएट होकर के होता है। फिर तीसरी बार भारतीय रुपए का 1 जुलाई 1991 को पुनः अवमूल्यन होता है और इसको अवमूल्यन करने का काम भारत के माननीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा किया जाता है और 1 जुलाई 1991 को $1 = 25.90 का एक्सचेंज रेट तय हो। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमने तो प्रारंभिक दिनों में मुद्रा के मूल्य को घटा करके जो है विश्व बाजार में अपनी कीमतें दी, लेकिन 1991 के बाद जो है भारतीय मुद्रा का बाजार आधारित मूल्य ह्रास होने लगता है, बाजार के द्वारा भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास होता है और यह मूल्य ह्रास जो है 1 जनवरी 2000 को मूल्य ह्रास होकर के $1 = 43.5 भारतीय रुपया होता है और 26 मई 2014 मैं रेखांकित इसलिए करता हूं कि एक नई सरकार यहां से आती है और 26 मई 2014 को भारतीय रुपया जो है ₹58.86 पर था और वर्तमान में जो है अगर मैं देखूं तो यह जो है 92-93 रुपए के आसपास चल रहा है। तो भारतीय रुपए का डिवेल्युएशन और डिप्रिसिएशन करते करते भारतीय रुपया जो है आजादी के समय जो $1.33 का था वह जो है $1 जो है हमारे 92-93 रुपए के आसपास पहुंचा है। तो इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय रुपया जो है डॉलर के सापेक्ष में क्रमशः कमजोर होता हुआ पाया जा रहा है और यही जो है आज का मुख्य विषय भी है। तो केवल भारतीय रुपए को हम डॉलर के सापेक्ष में अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय मुद्रा केवल डॉलर के सापेक्ष नहीं चलती है, विश्व की अन्य मुद्रा भी हैं जिनके सापेक्ष में भारतीय मुद्रा को हमको देखना समीचीन होगा, हमको विश्व की अन्य तमाम करेंसियों के साथ भारत की मुद्रा को देखना होगा। अगर डॉलर को छोड़ दिया जाए तो विश्व की कुछ प्रमुख मुद्राओं के साथ अगर देखते हैं तो जो कुवैती दिनार जो है आज भारतीय रुपया के सापेक्ष में सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देता और उसकी अगर बात किया जाए तो 1 कुवैती दिनार जो है 271.59 यानी 271.60 रुपए कुवैती दिनार के प्रति जो है यह हमारा एक्सचेंज रेट है। कुवैती दिनार के साथ ही साथ अगर बहरीन की मुद्रा के साथ देखा जाए तो बहरीन की दिनार के सापेक्ष में भारतीय रुपया जो है 222 रुपए के आसपास इसका एक्सचेंज रेट। अगर ओमान की मुद्रा के साथ देखा जाए, ओमान में रियाल चलता है, 1 रियाल के सापेक्ष में जो है भारतीय रुपया जो है 216 रुपए के आसपास है। तो डॉलर ही नहीं है, डॉलर से और भी तमाम मजबूत मुद्रा अगर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाए तो डॉलर से बहुत ही मजबूत मजबूत मुद्रा जो है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में चल रही है। कुछ और मुद्रा के साथ अगर हम देखें, चीन का जो है 1 युआन जो है भारत के 11.56 रुपए के आसपास बैठता है। अगर रूस के साथ अगर हम देखें तो रूस में रूबल की मुद्रा चलती है, 1 रूबल जो है हमारा ₹1.22 के आसपास बैठता है। तो केवल भारतीय मुद्रा को डॉलर के सापेक्ष होने वाले उतार चढ़ाव के साथ जो है अगर जोड़ के देखा जाए और भारतीय व्यापार को पूरी तरह से रेखांकित कर दिया जाए, डॉलर के कीमत में होने वाले परिवर्तन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस के जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि डॉलर से मजबूत भी मुद्रा इस वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में हमको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर भारतीय मुद्रा को हम विश्व की कुछ और मुद्राओं के साथ कंपेयर करें तो वियतनाम के 283 डोंग भारतीय मुद्रा के 1 इकाई के बराबर यानी 1 रुपए के बराबर जो है 283 डोंग पड़ता है। इसी तरह अगर लाओस में देखा जाए, लाओस में कीप चलता है तो 250 कीप के सापेक्ष में भारत का 1 मुद्रा। इसी तरह इंडोनेशिया में रुपया के नाम से वहां की मुद्रा चलती है, वहां की 182 रुपया जो है भारत के 1 रुपया के बराबर है। कंबोडिया है, दक्षिणी कोरिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये तमाम करेंसियां ऐसी हैं जिनकी करेंसियों के सापेक्ष में भारतीय करेंसी बहुत मजबूत स्थिति में हमको देखने को मिलती है। तो एक डॉलर के सापेक्ष में कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ती हुई कुछ लोग जो है इसको रेखांकित करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व में ऐसी बहुत सारी करेंसियां हैं जो डॉलर से भी मजबूत हैं और ऐसी बहुत सारी करेंसियां हैं जिन करेंसियों के सापेक्ष में भारतीय मुद्रा बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हमें बात करना है कि भारतीय डॉलर के साथ होने वाले उतार चढ़ाव के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को अगर देखा जाए, डॉलर की जो वर्तमान स्थिति है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब युद्ध विनष्ट राष्ट्रों ने अमेरिका में एक बैठक की वर्ष 1944 में, और 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, और ब्रिटेन वुड्स में जो है विश्व के कुल 44 राष्ट्रों ने प्रतिभाग किया था, और वहां से जो है एक वैश्विक करेंसी के रूप में वहीं से डॉलर को पहचान मिलती है, क्योंकि वैश्विक करेंसी में सबसे मजबूत मुद्रा की जरूरत थी, और उस समय मुद्रा को जो है सीधे जो है स्वर्ण के साथ जोड़ा जा रहा था, और अमेरिका के पास उस समय जो है सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार था। इस आधार पर उस समय जो है 1944 में 44 राष्ट्रों ने मिलकर के अमेरिकी डॉलर को वैश्विक मान्यता प्रदान की, और 1944 के बाद वैश्विक मान्यता के साथ जो है एक पहचान बना करके अमेरिकी डॉलर जो है आगे बढ़ता है। लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ 1970 में आकर के अमेरिका ने अपनी मुद्रा को जो है सोने से अलग किया, और सोने से अलग करके सऊदी अरब के साथ जो है एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट करता है। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट का मूल मोटिव था कि सऊदी अरब जो है विश्व बाजार में जो भी तेल सऊदी अरब बेचेगा वह डॉलर में बेचेगा, और सऊदी अरब के साथ इस प्रकार का जब समझौता हो जाता है तो आगे चल करके सऊदी अरब के प्रभाव में आकर के जो ओपेक राष्ट्र थे, इन ओपेक राष्ट्रों ने भी इस पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के साथ जो है अपने आप को जोड़ लिया। यानी इस प्रकार से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के आधार पर जो है ये कच्चे तेल सीधे डॉलर के साथ जुड़ जाते हैं, यानी विश्व बाजार में जो है कहीं भी कच्चे तेल का व्यापार होगा वो सीधे डॉलर के साथ होगा। विश्व के सारी अर्थव्यवस्थाओं को कच्चे तेल की आवश्यकता है, और जब सारे अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में सबको डॉलर की आवश्यकता है, तो वैश्विक डिमांड जो है डॉलर की पूरी तरह से बन गई। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वस्तु का जब डिमांड बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है वह वस्तु जो है बहुत ही मजबूत हो जाती है, क्योंकि वह जो है सर्वप्रिय वस्तु है, सभी लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है डॉलर क्रमशः मजबूत होते हुए हमको देखने को मिलता है। और अगर डॉलर की मजबूती के साथ अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो डॉलर की मजबूती के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ होता है तो अमेरिका जो है और अमेरिका की जो राजनीति है पूरी तरह से आक्रामक हो जाती है। अगर हम विश्व की कुछ प्रमुख घटनाओं को याद करें तो वर्ष 2000 में इराक के जो तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के द्वारा जो है यह घोषणा किया जाता है कि इराक अब कच्चे तेल का जो व्यापार है अमेरिकी डॉलर में न करके वो यूरो के साथ करेगा। यानी इराक जो है अगर यूरो के साथ अगर कच्चे तेल का व्यापार करेगा, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को अब ऐसा लगने लगा कि सद्दाम हुसैन जो है सीधे और सीधे डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सद्दाम हुसैन के साथ जो चीजें हुई वो विश्व पटल पे है, सभी लोग जानते हैं। सद्दाम हुसैन के बाद अगर हम देखें तो लीबिया के जो प्रमुख नेता गद्दाफी हुआ करते, गद्दाफी ने जो है अफ्रीकी देशों के लिए गोल्ड दिनार नामक एक नई मुद्रा लाने की योजना पर कार्य किया, और साथ ही साथ अफ्रीका को डॉलर आधारित व्यवस्था से वो मुक्त करना था। 2011 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के हस्तक्षेप के बाद जो है गद्दाफी के शासन का भी समाप्ति होता है। तो गद्दाफी ने भी डॉलर को चैलेंज देने का काम किया था। उसके साथ अगर वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देखें, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी तेल का व्यापार था वो डॉलर में न करके जो है विश्व की कई करेंसियों के साथ रसिया के करेंसी के साथ देना उन्होंने प्रारंभ किया। किस प्रकार से मादुरो के साथ आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ वर्तमान में आप इराक के साथ जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, और इराक के साथ जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, युद्ध की स्थितियां जो बनी हुई हैं, इराक के साथ युद्ध में भी अमेरिका की यही रणनीति है, क्योंकि इराक ने जो है पेट्रोल और डीजल या ये कहें कच्चे तेल जो है विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को विभिन्न करेंसियों में देने का काम किया था। तो अगर संपूर्ण विश्व में कहीं भी डॉलर के सत्ता को चुनौती मिलती है तो अमेरिका जो है किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। जहां तक रही अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, तो इसको महत्वपूर्ण रूप से आज हमको देखना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें डॉलर की आवश्यकता है अथवा डॉलर की आवश्यकता नहीं है, या डॉलर की आवश्यकता कितनी है। हम 2014 के पहले की परिस्थितियों को देखें और 2014 के बाद की परिस्थितियों को देखें। 2014 इसलिए कि 2014 से एक नई तरह की जो है व्यवस्था आती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। 2014 के पूर्व का जो है हमारा व्यापार वो पूरी तरह से डॉलर आधारित व्यवस्था पर आधारित था, यानी संपूर्ण व्यापार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को डॉलर की आवश्यकता पड़ती थी। विश्व बाजार में मात्र दो ही राष्ट्र थे, नेपाल और भूटान, जो भारतीय करेंसी में हमारे साथ व्यापार कर लिया करते थे, अन्यथा की स्थिति में भारत जो है विश्व में संपूर्ण राष्ट्रों के साथ जो है डॉलर में ही उसको व्यापार करना पड़ रहा था। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, इन्होंने भारत के व्यापार

0: जो डॉलर की निर्भरता थी उस डॉलर की निर्भरता को क्रमशः कम करने का प्रयास किया गया है। और क्रमशः कम करने के प्रयास में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ने रशिया के साथ, संयुक्त अरब अमीरात है, सिंगापुर है, इजराइल है, यूके है इत्यादि लगभग 20 से 22 देशों के साथ हमने जो है विशेष बेस्ट्रो अकाउंट खोल रखे और इस बेस्ट्रो अकाउंट के आधार पर हम उनसे व्यापार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने डिजिटल भुगतान ढांचे को भी अपने मजबूत किया है और डिजिटल भुगतान खाते के साथ ही साथ अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापार हम देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य व्यापार में एक व्यापार कच्चे तेल का है, तो कच्चा तेल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ने रशिया के साथ जो व्यापार किया था भारतीय करेंसी में हम रशिया के साथ तेल खरीदना शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार से वर्तमान जो राजनीति है डॉलर की निर्भरता को क्रमशः कम करते जा रही है और इसी प्रकार डॉलर के कीमतों में आने वाला जो उतार चढ़ाव है वह भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का विशेष प्रभाव नहीं डाल पाए। तो मेरे हिसाब से तो यही मानना है कि डॉलर के कीमतों में आने वाला जो उतार चढ़ाव है अगर हम अपनी निर्भरता को डॉलर पे कम कर ले गए और विश्व के बाजार में भारतीय मुद्रा के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर ले गए तो भारतीय मुद्रा और डॉलर के कीमत में जो चढ़ाव हो रहा है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह से उनकी हिंदी वार्ता डॉलर का वर्चस्व और भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे सुगम संगीत इस अंतराल के बाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, इस समय यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर को। और इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति ये भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंदर संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
5: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
4: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
5: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
4: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
5: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
4: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a Gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first

0: is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज़ फ़ातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई, लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा,
3: छोड़ दो,
4: छोड़ दो।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है,

0: को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती देवी, तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुँचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
3: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़कर कहते थे, हद।

0: ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
2: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्याल रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे, और ख़ास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहाँ आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओं, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

जटिल कर्म पथ पर थर थर थर कांप लगे रुकने पग जटिल कर्म।

0: बांसुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
2: बोल कहीं बोल यहाँ तो न बोल श्यामा, अमी छहर जहाँ वहीं गरल घोल श्यामा। बोल कहीं बोल यहाँ तो न बोल श्यामा। संस्कृति के उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में आने वाला मरण।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार। हर

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: विवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri Asanapurapu Yerraya is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्ले। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विथ नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु एर्रय्या इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रय्या नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सुरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashvani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:23 हो रहे हैं। हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।